पल पल में शामिल है। वो कौन है जो मेरी मंजिल है? वो कौन है जिसे मैं सुनना चाहता हूँ?

बन के साया मेरे संग रहता है कौन, मैंने ये न जाना कभी, ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी, वो ख्वाब है या हकीकत है, वो जो भी है मेरी जरूरत है, जरूरत।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
0: Mirchi 1. It's hot.

Well, देखते ही देखते हम यहाँ पर हफ्ते के एंड पर आ चुके हैं ऑलरेडी. वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम. मैं हूँ आफरीन, सिंपली आफरीन, राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और यार हफ्ते का एंड यानी हम थर्सडे की तरफ आ चुके हैं. और अक्सर ना हम सबकी आदत यही रहती है कि हम जिस पड़ाव पर है ना जिंदगी के, कि ये वो टाइम है जहाँ पर बहुत मेहनत करके हम हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं. और इसी पूरे चक्रव्यूह में मैं कह सकती हूँ हम अपने आप को कहीं ना थोड़ा सा इग्नोर तो जरूर कर लेते हैं. बॉस आराम तो क्या है भाई, अभी तो कमाने के दिन है, आराम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, रिटायरमेंट के बाद करेंगे, भाई क्या ही फर्क पड़ता है. लेकिन जिसने कहा है ना जो है आज ही है, बस जरूर सच कहा है कि यार हाँ आज है, हमें आज हमारे गोल्स की तरफ जरूर जाना चाहिए, हमें आज बहुत मेहनत करनी चाहिए. लेकिन ये मेहनत करने के लायक जो आपका शरीर है ना, वो तभी काबिल होगा जब आप सही से उसे अटेंशन दोगे. अब भले ही वो आराम के थ्रू हो, या फिर आपके डाइट के थ्रू हो, या फिर आपके वर्कआउट के थ्रू हो, एंड दिस is definitely the need of the hour, I feel. तो बस आज सुबह doesn't really want to be a preachy at all. लेकिन क्योंकि हम वीकेंड की तरफ है तो बस यही करूँगी, अगर कम सोते हो तो ज़्यादा सो, अगर बैठ के बहुत काम करते हो तो फिर यार चलो फिरो, जाओ वॉक करो, डू सम आउटडोर एक्टिविटी दिस वीकेंड. और अगर पूरा हफ्ता बस जंक खाते रहते हो, बाहर का खाना खाते रहते हो, ऑफिस के शेड्यूल की वजह से यू आर नॉट एबल टू ईट हेल्दी, देन वीकेंड पर कर लो, है ना. छोटे छोटे स्टेप्स, छोटी छोटी शुरुआत विद दिस बड़ा बड़ा शो. और अच्छे अच्छे गाने आपका इंतजार कर रहे हैं राइट हियर ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Is that Mr. Vipul?
2: Yeah,
3: it's Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from... com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
2: हाँ हाँ बोलिए।
3: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट? तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छी सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
2: बट इसमें करना क्या होगा?
3: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं?
2: मैं।
3: और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
2: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
3: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
2: फाइन।
3: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
2: मिलता है।
3: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
2: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
3: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो कि मैनेजर हैं, जो कि सीनियर मैनेजर हैं, जो कि सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी है, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
2: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
3: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं।
2: Have you gone mad?
3: आपने पॉटी लगाई है बच्चे कभी?
2: Talking about?
3: और इसमें
2: क्या बकवास कर रहे हैं?
3: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं, तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा।
2: आप डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग, ओके?
3: मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
2: हेलो
3: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
2: हाँ, हु आर यू?
3: सर मनीष।
2: हु आर यू?
3: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
2: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
3: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं, मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी डाल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मैंने मुर्गा बनाया है आपका, पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: This show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट STT Snoo Noo। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव

0: Mirci.
1: Oceane ticurii, oceane ticurii.

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां लई भंग होगी।

0: में ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

0: कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन बेडशीट जुड़ गई है आपके साथ आपके वेल इट इज 17th ऑफ सितंबर यानी थर्सडे का दिन वीक जो है हमारा देखते ही देखते खत्म होने को इधर आ गया है यार. व्हाट अ फास्ट वीक दिस वाज डेफिनेटली. मुझे तो बहुत ज्यादा तेजी से लगा है. डिड यू फील द सेम वे? वेल चलिए पहले तो मैं मेरे यूजुअल रूटीन काम की तरफ आ जाऊं. आपको जरा हालचाल बताऊं वेदर की और फिर इधर उधर की बातें करेंगे.
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान.
2: वेदर अपडेट.
0: वेल वेदर आज का ये कह रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है. अयो मिनिमम 29 डिग्री सेल्सियस है. दैट इज अ गुड थिंग. मतलब शाम के वक्त पर और ज्यादा बेहतर होने वाला है वेदर. दिस इज अ गुड साइन वी कैन से. वेल विद दिस बहुत ह्यूमिडिटी तो हवा में पता चली रही है लेकिन थोड़ी सी कल से कम है. सो दैट इज ऑल्सो अनदर गुड साइन. तो यही कहते हैं ना कि यार फाइंड हैप्पीनेस या फिर फाइंड द पॉजिटिविटी इन द लिटिल थिंग्स एंड प्रोबेबली दैट्स हाउ वी कैन स्टार्ट अ डे. बस इसी के साथ बहुत सारे गुड मॉर्निंग मैसेजेस आए हैं. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे. यू टू हैव अ ग्रेट डे. आपका नाम क्या है लेकिन यहाँ पर देखो तो खालिद. ओके देन वी ऑल्सो हैव आलिशान मैसेजिंग अस, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, हैव अ ग्रेट वीकेंड. यू टू हैव अ ग्रेट वीकेंड. एंड देन आई ऑल्सो हैव योर अपने नाम ये लोग लिखते नहीं है मेरे लिए बहुत मेहनत कराते हैं. नाजीन जी का मैसेज आया है. एंड विद दिस अगर आपको भी गुड मॉर्निंग मैसेज कहना है तो 5000 1896 इज WhatsApp number. You can just come here, drop in a message. Hello, hi, good morning, good morning, and yes, whatever. This what a song, yeah. ये गाने सुन के रखा. कभी कभार ऐसा लगता है कि यार हमें रहने देते वहीं पर. मतलब 90s वाले era में. Why did we come out of this era? है ना? Enjoy this beautiful track. Bombay Vikings and Falguni Pathak की आवाज़ में.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: शिल्पा राव, आपका तो हर गाना हमारा फेवरेट है, लेकिन इस बारिश में आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
2: आई लाइक दैट सॉन्ग।

0: फॉरगॉट द फिल्म्स नेम.
1: फिल्म का नाम था थक्षक और इस गायक का नाम शिल्पा राव. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
3: This show was absolutely amazing.
4: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
5: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव.

0: वेल सोनू निगम की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द मूवी साथिया, और सोनू निगम का मैजिक ना हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन उससे पहले पेट ओनर्स के लिए एक अगली अपडेट। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, मिर्ची मॉर्निंग्स में स्वागत है आपका। एंड इफ यू आर अ पेट पेरेंट या फिर एनिमल ओनर है, ये अपडेट आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए।
1: क्या खबर कतर?
0: खबर कुछ ऐसी है दैट कतर्स न्यू एनिमल हेल्थ लॉ नंबर 12 ऑफ 2026 हैज बीन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट। और अंडर द लॉ अब ये कहता है अगर एन ओनर अपने एनिमल को स्पेसिफाइड डिजीज के अगेंस्ट रिक्वायर्ड वैक्सीनेशन नहीं करवाता है तो काफी भारी पेनल्टी हो सकती है। इट कैन बी अप टू 1 ईयर इन प्रिजन, अ फाइन अप टू 200,000 कतरी रियाल और आइदर ऑफ द टू। एंड लॉ सिर्फ वैक्सीनेशन तक लिमिटेड नहीं है। देखिए अगर आपको सस्पेक्ट होता है कि आपका जो एनिमल है, पेट है, उसे कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो गई है, एपिडेमिक जूनोटिक डिजीज है, तो ओनर को ना विद इन 24 आवर्स कंपिटेंट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना है, एनिमल को वेट के पास ले जाना है एग्जामिनेशन के लिए, एंड सस्पेक्टेड एनिमल्स को शायद आइसोलेट भी करना पड़े। द लार्जर आइडिया इज सिंपल, एनिमल हेल्थ अल्टीमेटली पब्लिक हेल्थ से भी कनेक्टेड है ऑब्वियसली, राइट? बिकॉज कुछ डिजीजेस एनिमल से ह्यूमन तक ना स्प्रेड हो जाती है। सो एनिमल ओनर्स आउट देयर, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स अपडेटेड रखिए, वेट अपॉइंटमेंट्स को पोस्टपोन मत करिए, एंड आउट हो तो रजिस्टर्ड वेटरनेरियन के साथ बिल्कुल चेक करते रहिएगा, ठीक है? मैं हूँ आफरीन आपके साथ, सोनू निगम का सिलसिला जो है आगे बढ़ाते हुए। नाउ जॉइनिंग सोनू निगम इज ऑल्सो सुनिधि चौहान, फना मूवी का ये गाना। और सही में यार बारिश की बहुत याद आ रही है, आई विश, है ना? एंजॉय दिस ब्यूटिफुल ट्रैक ऑन मिल्की शॉट।

0: देखिए, गानों के सिलसिले को बढ़ाते रहेंगे आगे, लेकिन बीच बीच में हमें तो यहाँ पर आकर आपसे गुफ्तगू करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्सडे कैरीज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, आई फील, है ना। मतलब यार, वीकेंड जैसे ही आता है ना, कहीं ना कहीं ना दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स हो ही जाता है। एंड व्हाट इज बेटर कि अगर आप कोई नेचर में जाके दिमाग को आपके थोड़ा सा रिलैक्स करें। अब जहाँ पर कतर की बात आती है और नेचर की बात आती है, यहाँ पर आप पहाड़ और ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ऑफकोर्स वी आर सराउंडेड बाई वाटर ऑलमोस्ट फ्रॉम थ्री साइड्स, तो बस बीच भी जो है, एंड कतर का पानी ना मेरे ख्याल से एक अलग किस्म का सुकून देता है, क्योंकि यहाँ का जो समंदर है इट्स नॉट लाउड, वो अपनी स्ट्रेंथ नहीं बताता, इट्स सो काम, इट्स सो सीरीन। और ऐसे में अगर कोई बीच पर फेस्टिवल हो, देन व्हाई नॉट, वेल आई एम टॉकिंग अबाउट 974 के बीच पर फ्लोटीज फेस्टिवल, ये 18th of September को है, ओके। एंड दिस इज़ अ कम्युनिटी इवेंट और यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी ऑफ फन एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होने वाली है। इट्स अ फैमिली फ्रेंडली एटमोसफियर है, बहुत सारे स्विमिंग जोन्स हैं उधर फॉर चिल्ड्रेन अडल्ट, एंड इनफैक्ट देर इज ऑल्सो अ लेडीज ओनली एरिया एज वेल। वेल यहाँ जाने के लिए टिकट्स हैं अंडर द एज ऑफ 6 के लिए बिल्कुल फ्री है, पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए बिल्कुल फ्री है, और अगर आपका बच्चा ऑफकोर्स अंडर द एज ऑफ 14 है, 6 to 14, तो 15 का 3 रियाल, एंड एडल्ट्स हैव टू पे 35 का 3 रियाल। देखिए, अगर बहुत टाइम हो गया, ऑफकोर्स आई एम सो श्योर के बहुत महीने से, एटलीस्ट 2 मंथ्स से आप बीच पर गए नहीं होंगे, सो दिस इज़ अ वेरी गुड रीज़न, बहुत अच्छी वजह है कि आप जा सकते हो। चलिए फिर हमारे सोने सोने बीचेस के बाद चलते हैं सोने सोने गाने की तरफ।
1: इतना सोना क्यों,
0: अरिजीत सिंह की आवाज में, व्हाट अ ब्यूटीफुल गाना है ना।
1: इतना सोना,
0: माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्शीड्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मेरा हस्बैंड मेरी बात ही नहीं सुनता, क्या करूं?
1: अरे तो टेंशन काहे को ले रही है, उसको ना साइन लैंग्वेज में समझाना, नहीं तो लिख के दे दे।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

Caught you. कुछ गाने ऐसे होते हैं ना कि आप रोक ही नहीं पाते अपने आप को ना गाने से. You were singing this track. I'm so sure. Well, ये जो गाने का सिलसिला है ना, चलो इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और मैं इस गाने के उस पार आपको मिलती हूँ, क्योंकि अगला गाना भी ना बहुत प्यारा है. I'm sure you're gonna sing along. So yes, get ready. Leon D'Souza और Suzanne de Mello का साथ है आपके साथ और आप भी गाना शुरू कर दीजिए. माइक से दिल तक आफरीन है, इंतजार कर रही है इस गाने के बाद.

0: कतर में रहने वाले इंडियंस के लिए मुझे ऐसी स्टोरीज ना हमेशा इंटरेस्टिंग लगती हैं, बिकॉज हम यहाँ सिर्फ जॉब्स और करियर्स बिल्ड नहीं कर रहे हैं, देयर आर पीपल बिल्डिंग बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड दैट आर नाउ गेटिंग नोटिस्ड अक्रॉस द रीजंस। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, एंड देयर इज वन सच स्टोरी फ्रॉम कतर्स हेल्थ केयर सेक्टर।
1: क्या खबर कतर?
0: वेल देखिए, खबर ऐसी है दैट इंडियन ओरिजिन कतर बेस्ड एंटरप्रेन्योर मोहम्मद मियादाद वीपी हु इज बिहाइंड 33 होल्डिंग्स एंड नसीम हेल्थ केयर हैज मेड इट टू फोर्ब्स मिडिल ईस्ट टॉप हेल्थ केयर लीडर्स 2026 वेल इन इट्स फाउंडर्स एंड शेयर होल्डर्स कैटेगरी। इन फैक्ट ही इज वन ऑफ ओनली टू कतर बेस्ड फाउंडर्स सिलेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। अच्छा, इस स्टोरी को इंटरेस्टिंग और ये बनाती है कि हाउ मच हेल्थ केयर इटसेल्फ इज चेंजिंग। हिज ग्रुप हियर इन कतर नाउ वर्क्स अक्रॉस मेडिकल सेंटर, लैब, स्पेशलिटी केयर, मेडिकल सप्लाईज एंड एआई ड्रिवन हेल्थ केयर सर्विसेज। फोर्ब्स आल्सो नोट्स दैट नसीम हैज लॉन्च्ड एन एआई पावर्ड कॉल सेंटर इन कतर्स प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर एज वेल, एंड दिस इज एक्चुअली हिज फोर्थ consecutive year of Forbes recognition. Kya baat hai. So from an Indian expat starting a journey in Qatar to building something that's now being recognized regionally, definitely ye bahut hi zabardast success story hai. Mike se dil tak aap train hai aapke saath right here on Mirchi. It's hot.

0: Well, that is Arijit Singh ki awaaz mein, a beautiful track right here on Mirchi. Afreen hai aapke saath aur main judi hu ye batane ke liye ki bhai aaj kisi ka khaas din hai, kisi ke papa ne yahan par message kiya hai ki meri aaj bitiya rani ka birthday hai, to maine socha chaliye hum isne wish karte hain. So Amina who is studying in Birla school, papa ne kaha hai yahan par aur unka aaj birthday hai. Happy birthday to you dear, and I really wish ki aapka ye din hi nahi, आपका ये पूरा साल बेहतरीन गुजरे. एंड बस कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड. विद दिस लेट्स मूव ऑन टू आवर शो. इस ब्रेक के उस पार मिलती हूँ मैं आपको अच्छे अच्छे गाने और मिर्ची मुर्गा, वो तो है ही आपको एंटरटेन करने के लिए. नेक्स्ट राइट इन ऑन मिर्ची, इट्स हॉट
1: मिर्ची.
2: हेलो,
3: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
2: स्पीकिंग.
3: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ.
2: हाँ, sure.
3: अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
2: जी.
3: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं. आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
2: बोल कौन रहे हैं?
3: मैं जयदेव बोल रहा हूँ, और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं. अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज.
2: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है. जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
3: बिल्कुल
2: अलाउ नहीं करते हैं. जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे.
3: सही बात है,
2: गर्ल्स को नहीं देंगे.
3: सही बात कह रही हैं. और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई.
2: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है.
3: एक सेकंड होल्ड करिएगा. तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती? पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार. शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ. मैं हाँ,
2: आप किससे बात कर रहे हैं?
3: मैं, वो मेरी वाइफ है यही.
2: हेलो.
3: हाँ बोलिए.
2: हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधरिए.
3: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ.
2: नहीं, आप मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं. बिल्कुल नकली तरह से आप मेरे से बातें कर रहे हैं.
3: नहीं नकली तरीके से क्या, नहीं
2: असली मुझे दिख रही है. असली औकात नहीं कर रहे हैं.
3: नहीं मैं मेरी वाइफ है यार.
2: वो कोई बकौती है क्या?
3: नहीं बात नहीं, तमीज सीख ले. नहीं तमीज,
2: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सुननी है.
3: मेरी बात सुनिए. देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया.
2: Oh my.
3: और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए.
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
4: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ. डिस्कवर करो वर्सटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस. सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं.
5: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए. मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स. अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो.
6: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग.
7: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
8: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoonu. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah, live in

रोमी और श्रेया घोषाल की आवाज में ये जो गाना आपने सुना वारू फॉर एवर मिर्जापुर का गाना है बाय द वे, ये वही मिर्जापुर है जो इसके बहुत सारे OTT ऑफ कोर्स वहाँ पर सीजन्स आए हैं, बट नाउ इट इज ऑन द बड़ा पर्दा, बिग थिएटर्स, यस थिएटर्स में है, रिलीज हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो अभी भी जाकर देख सकते हो। वीकेंड आ गया है एंड वेल वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्टेंट वीकेंड, सो लेट्स टॉक अबाउट OTT कॉन्टेंट, लेकिन इस गाने के उस पार बताऊंगी इस वीकेंड पर आप क्या बिंज वॉच कर सकते हो। बट Before that, Udit Narayan. क्या बात है यार, सडनली ना यंग वाली फीलिंग आ जाती है इस गाने से। हाँ, हम अभी भी जवान है फॉर श्योर, लेकिन यार यू नो व्हाट आई से, एंजॉय दिस ट्रैक, DDLJ से राइट इट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: फिर धड़ाम से काजोल गिर जाती है। याद है लास्ट वाला सीन इस गाने में जहां शाहरुख खान काजोल को गिरा देता है लास्ट में, एंड यू नो व्हाट, ये एक्चुअल में ऐसा हुआ था। आई मीन काजोल वाज नॉट अवेयर कि ही वाज गोइंग टू ड्रॉप हर, और फिर वो जो रिएक्शन था वो बिल्कुल भी नेचुरल था। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफ्टरीन है यहाँ। और देखो वीकेंड वीकेंड नहीं लगेगा जब तक आफ्टरीन के ना ओटीटी रिकमेंडेशन नहीं आएंगे।
1: अरे भाभी जी, एकदम लेटेस्ट डिजाइन है,
2: फ्रेश है भैया, फ्रेश है, एकदम नया आया है।
3: अरे मार्केट में नया क्या है,
0: वेल नया तो ऐसा है कि अगर आपको लाइट वॉर्म फैमिली वाली कॉमेडी देखनी है, एंड इफ यू आर ऑफ माई टाइप, मतलब मुझे ना सारा भाई, खिचड़ी, ये सारे मुझे बहुत मजा आता था। आई मीन वो एक अलग किस्म की कॉमेडी थी, इट वॉज नॉट फोर्स्ड कॉमेडी एंड इट वॉज नॉट जस्ट डम कॉमेडी एज वेल, इट वॉज सो स्मार्ट कॉमेडी आई वुड से। और बस ऐसे ही वो जो मेकर्स थे जेडी मजेठिया, रातीश कपाड़िया, उन्होंने एक और सीरीज लेकर आए हैं एंड दैट इज चुंबक, नेटफ्लिक्स पर है। एंड

यू नो वॉट, आई डिड नॉट वेट फॉर वीकेंड. मैंने वीक में ही ना उसे बिंज वॉच करके खत्म किया है. इट्स अबाउट फाइव फैमिलीज, मुंबई की कॉलोनी, नेबर्स हैं एंड अ लॉट ऑफ केयर्स. बट द ब्यूटिफुल पार्ट इज वॉट स्ट्रॉन्ग स्टार कास्ट, यानी नीना गुप्ता, देवेन मुजानी, सुमित राघवन, सुमित व्यास एंड सो मेनी मोर. इट्स अ लॉन्ग लिस्ट. अर्जुन बिजलानी. देखिए, अगर ऐसा कुछ कॉमेडी देखना है तो डेफिनेटली चुंबक इज द वन. नेटफ्लिक्स पर आप ये देख सकते हैं. उसके अलावा अगर कुछ डार्क और इंटेंस देखना है देन तापसी पन्नू की गंधारी है. इट्स एन एक्शन थ्रिलर. मदर लूजेस हर आई साइट और फिर वो अपने बेटी को ढूंढ रही है जो किडनैप हो चुकी है. अच्छा, क्राइम थ्रिलर भी है तो वो है घमासान ऑन Z5. दिस इज डायरेक्टेड बाय तिग्मांशु धुलिया. हाँ, ही इज अ वेरी गुड डायरेक्टर बाय द वे. प्रतीक गांधी है इसमें. यू नो वॉट, हुज प्रतीक गांधी, जिसने स्कैम 1992 इफ आई एम राइट, यस, उसमें उन्होंने एक्ट किया था. और इसमें अरशद वारसी भी है बाय द वे. सो वेल, और एक है दैट इज हमारे कॉमेडियन जाकिर खान जो है, उनका शो जो पापा यार होता है, जो लाइव शोज करते हैं, वो अब नेटफ्लिक्स पर आ गया है. सो दिस स्टैंड अप कॉमेडी तो है, लेकिन ये बहुत इमोशनल भी है, फनी भी है एंड इट्स बेसिकली बिल्ट अराउंड हिज रिलेशनशिप विद हिज फादर. एंड आई एम श्योर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर पाते हैं. सो व्हाट ग्रेट कॉन्टेंट वी हैव यार. कॉमेडी है, देन देर इज इमोशनल, देन देर इज एक्शन, क्राइम, थ्रिलर, पूरा भेलपुरी है. आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट करके देख सकते हो एंड आई एम श्योर गारंटीड आपकी जो वीकेंड है बड़ा ही एंटरटेनिंग जाएगा. विद दिस आफरीन जो है अगले गाने की तरफ बढ़ते हुए माइक से दिल तक, अमित त्रिवेदी की आवाज में अनमिर्ची छठ.

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: रेडी?
6: रेडी।
5: टू लर्न?
6: यस।
5: टू प्ले?
6: एब्सोल्युटली।
5: टू ग्रो?
6: विद मेज़राती।
7: This school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
6: Milk, cheese, yogurt, labneh, eggs.
7: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
8: Tanishq lekar aaye hain Garden of Gems, jahan color is the story behind every stone, made to be worn often. पहनिए चाहे क्लासिक डिनर ओकेजन के लिए, फैमिली फंक्शंस के लिए या अ रेगुलर ऑफिस डे, अवेलेबल अक्रॉस तनिष्क स्टोर्स इन कतार और ऑनलाइन एट tanishq.ae। विजिट अ तनिष्क स्टोर नियर यू एंड सी द कलर्स इन पर्सन। TNC सप्लाई।
9: The show was absolutely amazing.
10: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो, एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर्स गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: Well, धुरंधर का ये गाना मधुबंती बागची और जैस्मिन सनलिस की आवाज में, राइटर और मिर्ची। और चलिए जरा गेम खेलने का वक्त आ गया हमारा। एंड यस, गेम से मेरा मतलब है कि लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट, जहां मैं आपको सीन सुनाती हूँ, आपने गेस करना है कि बॉस ये सीन कौन सी मूवी से है। सो हियर इट गोस,
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। सीन टेस्ट।
2: जब मैंने शहर छोड़ा था ना, पूरा शहर मुझको छोड़ने आया था। मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, लेकिन मैं हूँ बहुत बड़े हरामी टाइप का।
0: Alright, we know who is this and we probably also know which dialogue is this, but movie का नाम याद आ रहा है क्या? आ गया है तो बताओ मुझे। 5001896 इज माई नंबर। एज ऑलवेज यहाँ कुमैल का मैसेज आ चुका है एंड आई वुड नॉट लाइक टू से एनीथिंग। आप बस मुझे मैसेज करिए और बताइए 5001896। अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है ऋतु पाठक और निखिल डिसूजा की आवाज में। उनमें इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: करण जोहर, ऑनेस्टली बताइए, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द मॉनसून?
3: बारिश का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ कि आसमान के आंसू अभी गिरने लगे हैं। आई ऑलवेज लुक एट मॉनसून के ये बस उनके आंसू हैं, तो वी हैव टू पहुंच जाए जल्दी तो हो गया। बट आई नो कि रेन और बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन महीने में हमेशा ये मेरे फेवरेट महीने नहीं है साल के।
2: ये थे करण जोहर, हु स्पोक लाइक अ ट्रू ब्लू मुंबईकर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by iPay. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.
6: The Mentalist, Suhani Shah.

0: श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। 17th ऑफ सितंबर थर्सडे का दिन, इट इज वीकेंड। यार मजा ही आ जाता है मुझे जब वीकेंड ऐसा और भी जल्दी आ जाए सामने, एंड व्हेन यू लाइक लीस्ट एक्सपेक्ट के अरे अच्छा अरे आज थर्सडे आ भी गया, क्या एक खुशी मिलती है ना उससे। वेल फिलहाल तो मुझे खुशी मिल रही है आपके इतने सारे मैसेजेस से, एंड एट दिस पॉइंट जब मुझे मैसेजेस आते हैं मैं स्टूडियो में अकेली रहती हूँ और आई फील के ओके नाउ देयर इज समवन हुज लिसनिंग टू मी, एंड यस इसीलिए अब बात करते हैं इनके साथ में। सो स्लाइड्स कैमरा सीन टेस्ट हम खेल रहे थे, यहाँ पर सीन सुनाया था आपको मैंने, चलो पहले सीन सुन लेते और फिर उसके बारे में बात करेंगे।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। सीन टेस्ट।
2: जब मैंने शहर छोड़ा था ना, पूरा शहर मुझको छोड़ने आया था। मैं दिखता हूँ स्वीट एडिसन स्वामी टाइप का ना, लेकिन मैं हूँ बहुत बड़े हरामी टाइप का।
0: ऑनेस्टली अगर मैं आपकी जगह पे रहती ना, मुझे तीन चार नाम मेरे जहन में आते, जैसे बहुत सारे पिक्चर्स है यार, दिस इज हाउ ये कि मैं ना मुझे नाम ही नहीं आ रहे पिक्चर के। डिशूम है ना, ऐसे ही कुछ था ना, डिशूम भी था ना एक। और यार ये हीरो के ना मुझे मूवीज़ के नाम याद नहीं रहते, जुड़वा नंबर टू इफ़ आई एम राइट, एंड मोस्टली ऑल द मूवीज आर बेस्ड अराउंड ये हमारे गोविंदा चीकू नहीं क्या चीकी, हाँ उनके इसमें ही रहते, ची यार उनके ना मूवीज के आसपास इनकी मूवीज रहती है। कौन सी मूवी है यार वो सुन लेते चलो।
3: गुड मॉर्निंग आफरीन।
0: गुड मॉर्निंग,
3: दिस इज अल्ताफ।
0: हाँ अल्ताफ,
3: द मूवी नेम इज मैं तेरा हीरो।
0: ऑल राइट, मैं तेरा हीरो कहने वाले और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। चार्ली ने मैसेज किया था, त्रिशा का मैसेज है, सद्दाम हुसैन का मैसेज है, हुजैब मैसेज डाज, आफ्ताब, एंड देन आई हैव हुज दिस मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज है जिन्होंने दिशुम कहा था, मैं मुझे भी वही लगा था पहले तो। रिजाउल हसन एंड सुलेमान का मैसेज है अलॉन्ग विद कुमैल। सो यस इट इज़ मैं तेरा हीरो, वरुण धवन की मूवी है। एज आई सेड के वरुण धवन की मूवीज़ के नाम ना मुझे याद नहीं रहते until unless it is Badlapur student of the year, these two names I remember because वो पहली movie थी and Badlapur में कुछ इन्होंने अलग किया था, October भी एक movie थी, बाकी I feel his acting is so repetitive, his roles and characters are so repetitive, I just skip these with this। गाना तो हम बजाएंगे इस movie का ना, नीति मोहन और जावेद अली की आवाज में, ये अगला गाना on Mirchi Hot।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन बता बेटा सवाल क्या है।
0: क्या बताऊँ अब मेरे बंदे ने आज फिर से मुंह लटका रखा है।
1: अरे क्या कर रहे हो मैडम, जल्दी से उसका मुंह हुक से उतारो। मुंह को लटकाते नहीं फ्रिज में रखते हैं, बाहर रहेगा तो डिकम्पोज हो जाएगा और पुलिस भी आसानी से ढूंढ लेगी।
2: I'm joking.

0: Mirchi Mornings.
1: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
2: 89.6
3: Mirchi One. It's hot.
2: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन का साथ जुड़ गया है और अगला गाना श्रुति रानी की आवाज में राइट ऑन मिर्ची। लेकिन मिर्ची घड़ी का इशारा तो देख ले, सुबह के 8:01 की तरफ है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत जबरदस्त गाने, बातें, वीकेंड का माहौल पूरी की पूरी तरह लेकर आई हूँ मैं, यानी आफरीन ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, खतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: वेल आफ्टर दिस लवली ट्रैक चलिए बढ़ते हैं आगे और थोड़ी काम की बातें करते हैं. रादर आपके फायदे की बात यानी गोल्ड रेट्स देखते हैं अब.
1: गोल्ड अपडेट.
0: वेल आज का गोल्ड अपडेट ऐसा कहता है पैम 1 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 579 कतरी रियाल, पैम 5 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 2711 कतरी रियाल, 10 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 5352, वेयर एज 1 औंस गोल्ड बार इज फॉर 16543 एंड 10 तोला गोल्ड बार इज फॉर 61432 कतरी रियाल. वेल ये थे आज के गोल्ड रेट. सोना लेना हो या ना लेना हो भाव पर जरूर हमेशा रहनी चाहिए और अगर नजर है आपकी तो फिर आप देखोगे ट्रेंड के कुछ दिन से ये गिरते जा रहा है. Probably the right time to buy. माइक से दिलते काफ्रीन है आपके साथ और मिर्ची इट्स हॉट.
2: Stay ahead of today's gold rates with Alphardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
3: and earn Qatar Airways Avios today.
2: Visit our branches or download the app now.

0: Milci. Iskra bana, puska bana, saka bana. Ja bana. Burga, burga. Na vjet bala burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: हेलो, किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोल रहा हूँ
2: किरण पाल जी से बोल रहा हूँ। आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग बिल जा रहा है, अब ये पे नहीं कर रहा आपको।
1: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
2: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
1: 23।
2: एक सेकंड सर। सर आपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
1: बिल आया था 2200 रूपए का?
2: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
1: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
2: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
1: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
2: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
1: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती है।
2: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
1: अरे फोन काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा हूँ?
2: मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर। आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
1: चिल्लाने का क्या मतलब है?
2: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपको, मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
3: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
1: हेलो
2: सर, से जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
1: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
2: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
1: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार।
2: नहीं तो आप से बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज।
3: मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है सर। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है, मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे और चिल्ला।
1: कुकड़ों को
2: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट। मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स, अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट STT Snow. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन 89.6। और देखिए वक्त आ गया कि आपका फायदा ही करा दूं आज। बात तो सही है, बेस्ट एक्सचेंज रेट तो यही मिलने हैं, यानी आई पे पर। वैसे जैसे आज का एक्सचेंज रेट ही देख लो यार, एक कतरी रियाल के बदले आपको मिल रहे हैं इंडियन रुपीस, दैट इज 26.28। हाँ, इतना बढ़ गया है। फिर उसके बाद में अगर पाकिस्तानी रुपीस की बात करें तो 76.08 पर है। देन वी हैव द बांग्लादेशी टाका विच इज एट एग्जैक्टली 33.75। और अगर श्रीलंकन रुपीस की बात करें तो एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं 90.98। एंड नेपाली रुपीज इज एट 42.01। ये थे आज के एक्सचेंज रेट। घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां एंड खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला 89.6 विच यू वन एंड सिंपली आफरीन के साथ, माइक से दिल तक। इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज।
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: रेडी?
6: रेडी।
5: टू लर्न?
6: यस।
5: टू प्ले?
6: एब्सोल्युटली।
5: टू ग्रो?
6: विद मेज़राती।
7: दिस स्कूल सीजन फ्यूल एवरी डे विद डिलिशियस एंड न्यूट्रिशियस मेज़राती फ्रेश प्रोडक्ट्स।
6: मिल्क, चीज, योगर्ट, लैवेंडर, एग्स।
7: फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू लंच बॉक्स एंड स्नैक्स, मेज़राती हैज योर फैमिली कवर्ड। ग्रो विद मेज़राती फ्रेशली फ्रॉम कतर।
8: गोल्ड रेट कब बढ़ेगा कब गिरेगा, फेस्टिवल शॉपिंग के टाइम ये टेंशन क्यों?
9: विद तनिष्क्स बेस्ट गोल्ड रेट ऑफर, अपनी फेवरेट ज्वेलरी चूज करें और सिर्फ 20% एडवांस पे करके बुक कर दें। जब फाइनल परचेज कंप्लीट करेंगे तब बुकिंग डेट या बिलिंग डेट में से जो गोल्ड रेट लोअर होगा वही मिलेगा। मतलब फेस्टिव शॉपिंग प्लान कीजिए विदाउट पेइंग द फुल अमाउंट टुडे। ऑफर वैलिड अंटिल 8 नवंबर 2026 एट तनिष्क, लूडू हाइपरमार्केट, डी रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी। ओपनिंग सून एट अल वतन सेंटर एंड बरवा विलेज। तनिष्क, ज्वेलरी बाइंग मेड इजियर। टीएनसी सप्लाई।
10: अटेंशन शॉपर्स, द न्यूज़ यू हैव बीन waiting for is finally here.
11: Yes, it's time for Lulu Mega Deals.
10: Everyday essentials se lekar latest electronics, stylish fashion, fresh food and home favorites.
11: Sab kuch under one roof with incredible value. Spend less, save way more.
10: Exactly. To kal ka wait bilkul mat karo. Shop today, save today.
11: Rush to your nearest Lulu hypermarket right now before these deals are gone.
10: Lulu Mega Deals.
11: More shopping, more savings.
10: More mega moments. Visit Lulu today. Lulu, where the world comes to shop.
12: The show was absolutely amazing.
13: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

हाय रब्बा, क्या गाना है ना यार। इसकी म्यूजिक मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई लाइक टू वॉच द वीडियो ऑफ दिस सॉन्ग, यू नो, बहुत प्यारा वीडियो है। उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना, राइट इट ऑन मिर्ची। वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, राइट हियर ऑन मिर्ची। और देखिए, यहाँ पर वक्त हो चला है कि आप और मैं मिलकर खेलें मेरा फेवरेट वाला गेम, मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स। वेल, मिस्ट्री तो ये रहती है यहाँ पर कि हर रोज मैं कुछ नया लेकर आती हूँ, हर रोज कुछ अलग सवाल पूछती हूँ। तो आज मैं बॉलीवुड कनेक्शन गेम, यानी एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी जो चेन बनाती हूँ मैं जनरली, वैसी वाली, ठीक है, वो यहाँ पर सुनाने वाली हूँ आपको। तीन मूवीज है और आपने गेस करना है कि आखिर ये तीन मूवीज है कौन सी। हियर इट गोज। वो कौन सी मूवी है जिसमें हीरो ना बोल सकता है ना सुन सकता है, लेकिन उसकी लाइफ में दो बिल्कुल अलग लड़कियां आती हैं, उनमें से एक के साथ उसका रिश्ता बिना ज्यादा लफ्जों के ही बन जाता है। अब उस फिल्म की एक हीरोइन है जो दूसरे मूवी में है, जहां वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड की लाइफ में दोबारा आती है, लेकिन इस बार प्यार से ज्यादा प्रॉब्लम लेकर आती है और उस बॉयफ्रेंड के बॉस की वाइफ भी बन के आती है। और अब उस मूवी का हीरो की एक और फिल्म है जहां वो और उसकी टीम वो रेड करते हैं, और एक्चुअली मैं वो ऐसी टीम होती नहीं है, बस बड़े बड़े लोगों को लूट कर निकल जाते हैं। बताइए ये कौन सी तीन मूवीज थी। बड़ी मिक्स भेलपुरी, ये वो इधर उधर से, बट यस, थ्री मूवीज मैंने यहाँ समझाई है। आपने गेस करना है 5000 1896 पर कि आखिर ये मूवीज है कौन सी। ठीक है, मैसेजेस आने आ गए हैं शुरू, एंड दैट्स इंटरेस्टिंग यार। वेल, फिर से सुनाऊं क्या? ठीक है, चलो फिर से सुना देती हूँ। वो कौन सी मूवी है जिसमें हीरो ना बोल सकता है ना सुन सकता है, लेकिन उसकी लाइफ में दो बिल्कुल अलग लड़कियां आती हैं और उसमें से एक के साथ उसका रिश्ता बिना ज्यादा लफ्जों के ही बन जाता है। अब दूसरी फिल्म की, अब इसी फिल्म की वो हीरोइन की दूसरी मूवी है जहां वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लाइफ में आती है, लेकिन उसके बॉस की वाइफ बनकर और बहुत प्रॉब्लम्स भी लेकर आती है। अब उस मूवी का हीरो की एक और फिल्म है जहां वो रेड करते घूमते रहता है और लोगों को बेवकूफ बनाकर बस उनको लूट कर चला जाता है। ठीक है, बताइए 5000 1896। मीनवाइल अगला गाना यहाँ पर एज रिक्वेस्टेड अगेन, ये गाना रिक्वेस्ट किया है फुरकान ने, एंड फुरकान आई वुड से इज आवारापन पगलू। उनको आवारापन के कोई ना कोई गाने सुनने ही होते हैं, तो चलिए इस बार सुबोध शर्मा की आवाज में ये गाना, राइट ऑन मिर्ची साथ।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
1: अनु मलिक, आपको देख के लगता है कि जब आप पैदा हुए ना, आपने पहले मम्मी कहा ना पापा, आपने कहा होगा देखो बारिश हो रही है. But really, tell us, how old were you when you made the song?
2: What, I was 25 or something. It was raining cats and dogs. Waterfall से पानी गिर रहा था. सारे बादल नीचे आ चुके. And उस बीच में था ना, I saw the little train coming out. देखो बारिश हो रही है. देखो ना देखो, it's raining, it's raining, it's raining.
1: अब Twinkle Twinkle Little Star और बाबा ब्लैकशिप के साथ में ये वाला गाना तो ऐड कर ही लेना चाहिए स्कूल्स में, है ना अनु मलिक? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स आउट.
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: दिस शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग.
5: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. देयर्स गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
6: The Mentalist, Suhani Shah.

0: रांझा मूवी का ये गाना तुम तक मैंने पहुंचा दिए है जावेद अली कीर्ति सगातिया की आवाज में राइट या ऑन मिर्ची। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। दिस ब्यूटिफुल मॉर्निंग। आई सी एक चीज के आप सब बहुत खुश हो, और वो कैसे? क्योंकि अक्सर मुझे वॉइस मैसेजेस तो आते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस कई सारे आते हैं, लेकिन आज ना वॉइस मैसेजेस का भंडार आया है। आई फील सो गुड लिसनिंग सो मेनी वॉइसेस इन द स्टूडियो। वैसे मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पर, तो जब आपके वॉइस मैसेज आते हैं ना, दिल सच में खुश हो जाता है। और वो क्यों आए हैं वो तो मैं बताऊँ, जो लोग अभी जुड़े हैं वो इसलिए क्योंकि हम मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स खेल रहे हैं, जहां मैंने आपसे सवाल पूछा था, तीन मूवीज बताई थी, एक का कनेक्शन दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, एंड आपने गेस करना था आखिर ये मूवीज है कौन सी। सो वेल, हियर इट गोज। सवाल कुछ ऐसा है, वो कौन सी मूवी है जिसमें हीरो ना बोल सकता है ना सुन सकता है, लेकिन उसकी लाइफ में तो बिल्कुल अलग लड़कियां आती है, और उनमें से एक के साथ उसका रिश्ता बिना ज्यादा लफ्जों के भी बन जाता है। अब उस फिल्म की एक हीरोइन की दूसरी मूवी है जहां पर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लाइफ में दोबारा आती है, लेकिन उसके बॉस की वाइफ बनकर एंड बहुत प्रॉब्लम्स लेकर आती है। एंड नाउ इस हीरो की एक और एक फिल्म है जहां वो अपनी एक टीम बनाकर प्रोफेशनल्स की तरह रेड मारने जाता है और बड़े बड़े लोगों को लूट लेता है। And I have so many answers here. Let's dive into the answers directly.
1: Good morning, Afreen.
0: Good morning. I am good.
1: आज mystery box में जो movies आई है, first movie is Barfi.
0: Okay.
1: Second movie is Aitraaz.
0: All right.
1: और third movie है Special 26.
0: Okay.
2: Good morning, Afreen. Assalam alaikum. कैसी हैं आप? Yusuf
0: here. वालेकुम अस्सलाम.
2: वो तीन films हैं. बर्फी,
0: ओके,
2: एतराज एंड स्पेशल 26।
0: दैट्स राइट।
3: हाय आफरीन, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग।
3: द फर्स्ट मूवी इज बर्फी, द सेकंड मूवी इज एतराज एंड द थर्ड मूवी इज स्पेशल 26। हैव अ लवली वीकेंड, बाय बाय।
0: यू टू हैव अ ग्रेट वीकेंड। या
4: द मूवी नेम इज
0: हां जी
4: बर्फी,
0: हाँ जी,
4: एतराज एंड स्पेशल 26।
0: दैट्स राइट, दैट्स राइट।
5: हाय आफरीन,
0: हाय, हाल
5: ताप। मूवी के नाम से जो आपने पूछे थे, इसमें पहली मूवी है बर्फी और दूसरी मूवी का नाम है एतराज,
0: ओके,
5: और तीसरी मूवी का नाम है स्पेशल 26।
0: ऑल राइट, एंड आवर लास्ट आंसर,
6: हाय आफरीन, दिस इज हाना, द मूवी नेम इज बर्फी,
0: हाँ जी,
6: एतराज एंड स्पेशल
0: 26। दैट इज राइट अहाना। एंड इतने सारे मैसेजेस आज आए थे, अहाना ने इनफैक्ट कॉल भी किया था हमें और पूरे डिटेल में समझाया भी था। वेल, उनके साथ पुरुषोत्तम, शुजा इमाम, बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया है ना, कुंवर पांडे, एंड देन हु इज दिस, ये नाम नहीं पता है मुझे, ताहिर का भी मैसेज आया है, देन आई हैव पप्पू शाफी मैसेजिंग मी, एंड यस यार, आज तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आए और सबको जवाब देते देते यहाँ पर मैं थक गई, लेकिन गाना तो जरूर सुनाऊंगी। एतराज से ये गाना ताहिर की रिक्वेस्ट, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। एंजॉय दिस लवली ट्रैक ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बताइए।
0: मैं मेरी एक्स को भुला नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ?
1: अरे ब्रो, ये तो अच्छी बात है ना, अपनी एक्स का नाम अपना पासवर्ड बना ले, कभी भूलेगा ही नहीं ना।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6 Mirchi One. It's hot.
0: Time check.
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
3: मिर्ची घड़ी का इशारा है सुबह के 9:02 की तरफ और गाना अरिजीत सिंह की आवाज में सैयारा मूवी से राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

अरिजीत सिंह की आवाज में, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक यार। ये गाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगला गाना कैलाश खेर की आवाज में, और उसके तुरंत उस पार आऊंगी मैं फिर से बातें करने के लिए, बट दिस ट्रैक इज अ ब्यूटीफुल वन। एंजॉय इट ऑन मिर्ची।

देखो जैसा वीकेंड आता है ना, वीकेंड का एक प्रॉब्लम है दैट इट गेट्स ओवर वे टू क्विकली. देखिए फ्राइडे सैटरडे तो प्लान्स आउटिंग फैमिली टाइम में निकल जाता है, देन संडे अराइव्स एंड सडनली इट्स बैक टू रूटीन. और सबसे पहला सवाल फॉर ऑल द लेडीज आउट देयर या फिर एनीवन, कि भाई एक दिन का एक रहता है कि आज खाने में क्या है. वेल नेक्स्ट वीक का एटलीस्ट 3 meals का आइडिया मैं दे देती हूँ वो भी एट एब्सोल्यूट बारबेक्यू. एवरी संडे मंडे एंड ट्यूजडे यहाँ पर आप लंच एंजॉय कर सकते हैं एट जस्ट 54 कतरी रियाल. यस एंड डिनर इज एट 74 कतरी रियाल. सो संडे को वीकेंड मोड थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं, मंडे ब्लूज को गुड फूड से फिक्स कर सकते हैं, और ट्यूजडे को सिंपली कुकिंग से ब्रेक चाहिए तो फिर यू नो वेयर टू हेड. एंड एब्सोल्यूट बारबेक्यू इज ऑल्सो जॉइनिंग अस as the refreshment partner for Suhani Shah live in Qatar. So weekend enjoy कीजिए और next week का food plan अभी से ही sort कर लीजिए. Mike से दिल तक आफरीन है आपके साथ. Right here on Mirchi, it's hot.

डिजाइन तू करे ब्लो, बाकी करे शाइन तू करे ग्लो। जीन्स डाली डाली तूने जो वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो। बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज तू है सैवेज बेबी तू है रॉ। मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लॉ। बेबी लेट्स गो Right now, देखो मुझे वेट ना इतने कराओ। लक तेरा लीन, बात तेरी मीन, टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Gabana. Burka, burka. Na pierdwa la burka.
1: Milci, burka.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: हाँ जी कौन?
2: हेलो, किससे
3: बात करनी है?
2: भैया किससे बात करनी है?
3: भैया नंबर चेक करके दोबारा मिला?
2: पागल
3: पागल पता नहीं कौन बोल रहा था।
4: इको आ रहा है। इको
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो
3: हेलो जेल साले भैया को मारूंगा तुझे, मैं बता रहा हूँ।
2: भैया नंबर चेक
3: करके मिला।
2: हेलो
3: हेलो
2: भैया क्यों परेशान कर रहा,
3: क्यों परेशान कर रहा है किसी को? पागल हो गया क्या यार?
2: पता नहीं कौन
3: है, पता नहीं कौन फोन करे जा रहा है, फोन करे जा रहा है। अबे पागल हो गया क्या यार? महंगा पड़ जाएगा, नंबर आ गया मेरे पास।
2: पागल
3: कहीं का?
4: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया। क्या नाम है सर आपका? बुरा मत मानिएगा प्लीज।
2: रवि
4: है। रवि, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आप एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे, उसमें एको नहीं आएगी। बहुत परेशान कर दिया आपने
2: भाई।
4: आप खत्म कर दो यार।
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek sham, ek stage aur do kamal. Book your tickets now at SCT Snoo. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah,

Well, what a beautiful song. Shersha movie se ye gana, B Prak aur Justin Royal ki awaaz mein. Very good morning and welcome back. It's a Thursday morning, yani 17th of September. और हमारा वीकेंड आ गया है और वीकेंड के आते ही ना एक अलग सी खुशी तो होती है. छोटी छोटी खुशियाँ ही कहिए या बड़ी बड़ी, किसी के लिए वो बड़ी खुशी रहेगी, लेकिन यार इसे ना सही में यू शुड लिव इट. मतलब वीकेंड के लिए कुछ ऐसा खुद के लिए करना ही चाहिए. अब भले ही वो आपके दोस्तों से मिलना हो सकता है, बातें करना हो सकता है, घर वालों के साथ लंबी फ़ोन कॉल हो सकती है, या फिर जस्ट निकल लिए ड्राइव पर अपनी खूबसूरत जगह, अपनी फेवरेट वाली जगह, या इवन बेटर आई टेल यू आई एम अ फूडी, अपने पसंद का खाना भले ही वो कोई भी रेस्टोरेंट में हो. वक्त मिलता है ना अपने लिए, करो यार. एंड स्पेशली ना बच्चों के लिए वक्त निकालो. जैसे ये वीकेंड ना मॉल ऑफ कतर जा सकते हो, वहां पर है द इंटरनेशनल आइसक्रीम शो. यस, बड़ा ही यूनिक नाम है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन क्या है देखने के लिए आपको तो डेफिनेटली जाना ही होगा, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लेस वेंडम में लेगो शोज फेस्टिवल चल रहे हैं. ये जो है ये अभी नहीं है, ये थोड़े टाइम बाद है, लेकिन यस ये भी आने वाले टाइम में है. अपार्ट फ्रॉम दैट फ्लोटीज फेस्टिवल है जो 974 बीच स्टेडियम के पास ही है, वैसे देखा जाए तो वहां पर ये होने वाला है. दैट इज ऑल्सो फॉर किड्स. ऑल इन ऑल मैं कहना चाहूंगी कि यार थोड़ी सी जो चेंजेस है वेदर में डेफिनेटली आ रहे हैं. अगर शाम की बात करें तो यस, शाम में हम थोड़ा सा बेटर वेदर रहेगा. सो एट दिस पॉइंट आई वुड से कि आप जो भी प्लान्स है बिल्कुल शाम में ही जाइए. और जहां शाम की बात याद है ना, थोड़ा सा सनसेट के टाइम पर जा सकते हैं ओल्ड दोहा पोर्ट पर, आफरीन की फेवरेट वाली जगह यार, क्योंकि वहां पर ना अब एयर कंडीशन आ गए हैं. वो जगह जहां रेस्टोरेंट्स हैं, वो वुडन वॉकिंग पाथ है, याद आया आपको. इनफैक्ट वो वुडन वॉकिंग पाथ के उस तरफ समंदर के तरफ ग्लासेस भी लग गए हैं, सेफ्टी का ध्यान में रखते हुए. सपोज आप बच्चों के साथ वहां चल रहे हैं तो अब वहां पर सेफ्टी के लिए ग्लास है पूरी. एंड में ही जाइए. और जहां शाम की बात याद आइए ना, थोड़ा सा सनसेट के टाइम पर जा सकते हैं ओल्ड दोहा पोर्ट पर, आफरीन की फेवरेट वाली जगह यार, क्योंकि वहां पर ना अब एयर कंडीशन आ गए हैं. वो जगह जहां रेस्टोरेंट्स हैं, वो वुडन वॉकिंग पाथ है, याद आया आपको. इनफैक्ट वो वुडन वॉकिंग पाथ के उस तरफ समंदर के तरफ ग्लासेस भी लग गए हैं, सेफ्टी का ध्यान में रखते हुए. सपोज

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: नीड टू सेंड मनी होम? मेक इट फास्ट, मेक इट सेफ, मेक इट अल्फा डॉन एक्सचेंज,
6: योर ट्रस्टेड चॉइस फॉर सेंडिंग मनी, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज एंड गोल्ड बार्स एंड कॉइन्स। विजिट आवर नियरेस्ट ब्रांच और डाउनलोड द अल्फा डॉन एक्सचेंज ऐप नाउ। फॉर असिस्टेंस कॉल और व्हाट्सएप 4453777।
7: Attention shoppers, the news you've been waiting for is finally here.
8: Yes, it's time for Lulu Mega Deals.
7: Everyday essentials se lekar latest electronics, stylish fashion, fresh food and home favorites.
8: Sab kuch under one roof with incredible value. Spend less, save way more.
7: Exactly. So kal ka wait bilkul mat karo. Shop today, save today.
8: Rush to your nearest Lulu hypermarket right now before these deals are gone.
7: Lulu Mega Deals.
8: More shopping, more savings.
7: More mega moments. Visit Lulu today. Lulu, where the world comes to shop.
9: 89.6, 89.6.
4: It's hot.

0: डांस हो गया है। ओमकारा मूवी का ये गाना, श्रेया घोषाल की आवाज़, विशाल भारद्वाज का साथ, आई जस्ट लव दिस ट्रैक। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप सभी के साथ एक ही तरह से बात करते हो क्या? वेलकम बैक टू माय शो मिर्ची मॉर्निंग सिंपली आफ्टरीन के साथ। और सिंपली आफ्टरीन इस वक्त पर सिंपल सी बातें शायरी के जरिए आपको बताती है। और आज कुछ ख्याल ऐसा आया है मेरे जहन में कि हम ना कभी कभार कुछ लोगों से ऐसे बातें करते हैं, अपनी आवाज़ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, लहजा थोड़ा सा नरम हो जाता है, और ऐसा सबके साथ नहीं होता है ना। इस बात पर ही आज की शायरी सुन लीजिए।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: तो अर्ज किया है कि माना कि हम अदब से बात नहीं करते, माना कि हम अदब से बात नहीं करते, पर ये मानो कि मतलब से बात नहीं करते। ये नर्म लहजा, ये प्यारी बातें तेरे लिए, ये नर्म लहजा, ये प्यारी बातें तेरे लिए, हम इस लहजे में सबसे बात नहीं करते। क्या समझे जनाब? ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट है ना मिल रहा है आपको यहाँ पर मेरा रेडियो के जरिए, ये भी खास है। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: The late Irfan Khan से एक बार पूछा गया कि कहाँ की बारिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है? Is it Delhi? Is it Mumbai?
2: उसका मजा सिर्फ राजस्थान में है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ बरसात जो है देर से होती है। वहाँ जो है सावन को सेलिब्रेट किया जाता है, सावन भादो जो कहते हैं, यू नो, फसल भी कटती है और झूले लगते हैं। राजस्थान में जो है बरसात में भीगने का और बरसात का जो मजा है वो बहुत अलग है।
1: ऐसा एक दिन नहीं जाता जब इरफान खान का ख्याल नहीं आता। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
4: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
5: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

वेल लैला मजनू का ये गाना अरिजीत सिंह और जॉनिटा गांधी की आवाज में, बहुत ही अंडररेटेड मूवी यार. मतलब वो जो कहते हैं ना, उसे उस वक्त पर उसका वो ड्यू क्रेडिट नहीं मिला था, बट इवेंचुअली मिला. एंड बॉस, अगर आपने अभी तक लैला मजनू नहीं देखी है ना, स्पेशली वो लोग जो थोड़े से इमोशनल टाइप है, रोमांटिक टाइप है, मैं उन्हें बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करूंगी जो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल है जिंदगी में, एंड दे डोंट हैव पेशेंस फॉर एनी रोमांटिक मूवीज. सो प्लीज, नॉट फॉर यू, बट मेरी तरह जो है, जो रोमांटिक टाइप्स है, और उन्हें अभी तक यार लैला मजनू नहीं देखी, अविनाश तिवारी और तृप्ति डिमरी की. रियली बंदी ने एक्चुअली एक्टिंग बहुत अच्छी की है इसमें, एंड दिस मूवी इज डायरेक्टेड बाय माय फेवरेट यार इम्तियाज अली. वेल ये गाना जो था लैला मजनू से गाना रिक्वेस्ट किया गया था ताहिर की तरफ से, एंड आई होप यू एंजॉयड इट विद दिस. मेरा जो है आहिस्ता आहिस्ता नहीं, लेकिन यहाँ से इतनी जल्दी जाने का वक्त आ गया है. वीकेंड जो है मेरा ऑफिशियली अब शुरू होता है, आपका शुरू होने के लिए थोड़े से घंटे बचे हैं, लेकिन नो वरीज, फटाफट से गुजर जाएंगे. एंड हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ रिलैक्सिंग टाइम, have your own time this weekend, और बस खुश रहो, हमेशा खुश रहिएगा. यही कहते हुए मैं लेना चाहूंगी अलविदा, आऊंगी अगले हफ्ते right here on the same show, मिर्ची mornings. अपना ख्याल रखिएगा. और yes, अगला गाना जब मैं ये सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आजाद हो गई और कहीं तो बस निकल पड़ी हूँ अरिजीत सिंह की ये आवाज में. ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ ऑल माई ट्रेवलिंग एडवेंचर्स. क्या आपको भी ऐसे ही कुछ लगता है क्या? माइक से दिल तक आफरीन लेना चाहेगी अलविदा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
1: मेरी बीपी कभी मुझे सीरियसली लेती ही नहीं, क्या करूं?
0: तो प्रभु क्या है ना कि आप तुरंत ही हॉस्पिटल की ओर प्रस्थान करें, सीरियस लोगों को ना वहीं ले जाया जाता है।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10। आप सुन रहे हैं मिर्ची वन कतर
2: टाइम चेक
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: अपनी टाइम मशीन से 2004 से आपके लिए गाना लेकर आई मैं. एंड यू नो वीर जारा का जो पूरा एल्बम है, इट्स अ होलसम एल्बम. नहीं
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे आने पारुल के साथ. ये देखो जी, लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौड़ की आवाज में मैंने आपको ये सुनाया. अच्छा बाय द वे, आपको पता है वीर ज़ारा में रानी मुखर्जी का जो किरदार है वो एक्चुअली ऐश्वर्या राय के लिए लिखा गया था, बट देन फॉर सम रीजंस वो नहीं प्ले कर पाई ये पार्ट और ये रानी मुखर्जी ने प्ले किया एंड इट बिकेम अ क्लासिक. ऐसे ही ना जिंदगी में बहुत सारे आपने देखे होंगे चीजें जो आपके लिए नहीं होती, आप चाहते हो बहुत सारा, बट कहते ना कि गॉड्स प्लान्स आर बिगर देन योर प्लान्स. तो ये शब्द जो है तेरे लिए, ये नोट करके रख लो, क्योंकि जो तेरे लिए है ना दोस्त वो तुझे मिल जाएगा. हो सकता है थोड़ी देर लगे, तुझे समझ ना आए, पर जो तेरे लिए है वो तेरे लिए है. अगला गाना फिर से तेरे लिए, फ्रॉम द फिल्म फितूर. ये आप सुनोगे सुनिधि चौहान और जुबिन नौटियाल की आवाज में. आई थिंक ये गाना आपने नहीं सुना होगा, बट जस्ट गिव इट अ हियर. यू नो कुछ गाने होते हैं ना जो फिल्म में ऐसे दूसरे तीसरे चौथे नंबर वाले गाने होते हैं जिनको हम शायद सुनते हैं और भूल जाते हैं. दिस इज वन ऑफ देम, बट दिस इज अ ब्यूटीफुल ट्रैक. सुनो इसको, मिलते हुए छोटे से ब्रेक के बाद. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची कैफे. मैं हूँ आपके साथ पारुल. इट्स हॉट.

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. La vidva la murga. Milci, murga.
2: हेलो,
3: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
2: स्पीकिंग,
3: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ आपका। अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
2: जी।
3: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
2: बोल, कौन रहे हैं?
3: मैं जयदेव बोल रहा हूँ, और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं। अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज।
2: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है। जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
3: बिल्कुल
2: अलाउ नहीं करते हैं। जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे।
3: सही बात है,
2: गर्ल्स को नहीं देंगे।
3: सही बात कह रही हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई।
2: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है।
3: एक सेकंड होल्ड करिएगा। तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती? पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार। शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ। मैं हाँ,
2: आप किससे बात कर रहे हैं?
3: मैं, वो मेरी वाइफ है यही।
2: हेलो,
3: हाँ बोलिए।
2: हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधरिए।
3: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ।
2: नहीं, आप मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं।
3: हाँ?
2: नकली तरह से आप मेरे से बातें कर रहे हैं।
3: नहीं, नकली तरीके से क्या?
2: नहीं, असली मुझे दिख रही है। असली औकात नहीं कर रहे हैं।
3: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार।
2: वो तो कोई बपौती
3: है। तमीज सीख ले। नहीं, तमीज
2: नहीं, बिल्कुल नहीं सुननी।
3: मेरी बात सुनिए। देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया।
2: Oh my.
3: और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: This show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCTs Nunu. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: refreshment partner Baladna. School's back. Time to power up.
1: With Baladna milk, Laban and yogurt make every school day deliciously nutritious.
2: Baladna.
1: Taste that Qatar loves.
3: Authentic fashion partner Ivy. Shop 200,000 plus styles from the world's most loved brands on Ivy. With virtual try-on, AI shopping assistant and 90-minute delivery.
4: Partnered by Homezaras. Super sale. 20 to 50% off across the store till 30th September 2026. Shop in store or online at homezaras.qa and Daiso Japan. Your one-stop back-to-school shop.
5: Transportation partner Almufta. Rent a car.
6: Printing and advertising partner Brand Arts. Print, signage and events. Your trusted partner in creating impactful brands and unforgettable events.
7: Visual media partner Rehab Media.
8: Production partner Symphony.
9: Mirchi Stories. Stories.
10: Bas 24 ghante hi rahengi.
11: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
12: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
11: क्या?
12: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
13: मिर्ची, इट्स हॉट।
14: The show was absolutely amazing.
15: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

0: जो इश्क दे फनियर है ना, ये बहुत ही फनी फनी जगह पर लग जाते हैं कुछ लोगों को, मैं बता रही हूँ आपको।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ। आपको पता है सुबह सुबह जिम जाओ, ठीक है, वहां भी कुछ इश्क दे फनियर चल रहे होते हैं। अगर आप ऑफिस जाओ वहां भी चल रहे होते हैं। अगर आप यू नो सोसाइटी में नीचे घूमने निकल जाओ अपनी घर के नीचे, तो वहां भी कुछ चल रहे होते हैं। स्कूल कॉलेज एवरीवेयर आई टेल यू। तो इन सब लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी जिनको जहां देखो वहां इश्क मिल जा रहा है, कि भाई गूगल मैप्स भी अभी ये बताने में तुम्हें असमर्थ है कि प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया। अपना नहीं है मेरा, कहीं पढ़ा था, अच्छा लगा तो सोचा आपको भी बताऊं। वेल, ये ना जेनरेशंस वाइज प्यार और इश्क डिफर कर रहा है अभी। तो अब यार हम जो मिलेनियल्स है ना, हमें ये ब्रेड क्रमिंग और ये सब समझ में नहीं आ रही है। हम इस वाली जेनरेशन के हैं। जो अगला गाना आ रहा है सोनू निगम और अलका याग्निक की प्यारी आवाजों में, सुनो इस गाने को। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अच्छा वो झड़ी है क्या? मैं हमेशा लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है गाती थी अभिजीत सावंत. थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: ऐसे ही मैं भी ले आती हूँ आपके लिए ऐसे ऐसे गाने जो शायद आपने नहीं सुने हो या फिर आप भूल चुके हो।
1: मिर्ची कैफे,
0: मिर्ची कैफे इज द शो। मेरा नाम है पारुल। आपको पता है ये फिल्म सत्य प्रेम की कथा से ये गाना है अरिजीत सिंह की आवाज में एंड कियारा आडवाणी एंड कार्तिक आर्यन। आपने वो फिल्म पक्का देखी होगी, बट आपको ये गाना याद था नहीं होगा। सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक ना। ऐसे बहुत सारे गाने हम भूल जाते हैं, ऐसे भूले बिसर जाते हैं हमारे लिए। वेल, आपको पता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्लोबल रिसर्च में ये पता चला है कि आफ्टर 33 ईयर्स, मतलब जब आप 33 साल के हो जाते हो 33 ईयर्स के, उसके बाद आप नया गाना उस तरीके से कंज्यूम करना बंद कर देते हो। देन यू ओनली लिसन टू

द सॉन्ग्स विच यू रियली लाइक ऑलरेडी लाइक. नए गानों में उतनी शिद्दत नहीं लगाते आप. सीरियसली, क्या आप भी ऐसा करते हो? ये ग्लोबल रिसर्च है. आई वॉन्ट नो अबाउट यू. क्या आपको नए गाने सुनना पसंद है? ऑफकोर्स, तभी आप मेरा शो सुनते हो. नहीं, मिर्ची कैफे इज द शो. Paruls.world के नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिलूंगी. प्लीज मुझे बताओ कि कैसे गाने आपको सुनना पसंद है और आप कैसे गाने मेरे शो पे सुनना चाहते हो. ऑल्सो आप ये बताओ कि कौन सा गाना आज के पूरे 2 घंटे के इस प्रोग्राम में आपको सबसे अच्छा लगा. ओके, प्लीज डू राइट टू मी. नंबर भी है मेरा एक व्हाट्सएप का, 7045983983. यू कैन से हाय पारुल, मिर्ची कैफे, जो भी लिखकर आप उसके बारे में लिख सकते हो. ओके, बट प्लीज ये याद रखो हमेशा कि गाने ही एक ऐसी चीज है जो हमें पता नहीं कौन सी दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. हमें भी नहीं पता कि कौन सा गाना सुन के कौन सा इमोशन स्ट्राइक होगा हमारे अंदर से. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, ट्रस्ट मी. तो गाने सुनना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कोई सी भी एज हो जाए आपकी. तो वेल, अब मेरे जाने का वक्त यहाँ से हो चुका है. अब आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी. इंस्टाग्राम पे आप मुलाकात कर सकते हैं. एंड अभी के लिए बाय बाय टाटा. अपना ख्याल रखो और अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखो, क्योंकि जिंदगी कितने पल की है. सुनो केके की आवाज में. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव.

0: कितनी सारी ऐसी दास्तानें होती है ना जो हमारे अंदर ठहरी हुई होती है ऑफ आर ओल्ड मेमोरीज।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। आई रिमेम्बर जब मेरा स्कूल खत्म हुआ था, आई वॉज इन ऑल गर्ल्स स्कूल। स्कूल के बाद सब अपने अपने कॉलेज में लग गए, बायो वाली फ्रेंड्स सब डॉक्टरी की पढ़ाई में जिंदगी बिताने लगी, किसी की शादी हो गई, कोई दूसरे शहर चला गया, कोई पढ़ने के लिए या यू नो जॉब्स के लिए दूसरे शहर में चला गया, और फिर नए दोस्त बनते चले गए। नहीं, पर एक वो होता ना कि जो पहले वाले दोस्त आपको जानते हैं जिस तरीके से, वो नए दोस्त नहीं जान पाते हैं, एंड यू इवेंचुअली आप ग्रो करते हो मैच्योरिटी में और अलग अलग लेवल्स में। सो हुआ क्या कि मेरा बर्थडे आया, जो मेरे उस वक्त के खास दोस्त थे आसपास के, उन्होंने काफी अच्छा सा पार्टी अरेंज किया, मस्ती किया एंड ऑल दैट। मेरी ना एक पुरानी दोस्त है, उसका कॉल आया, उसने मुझे बोला कि हे क्या कर रही है, आई एम श्योर तेरे लिए कोई ना कोई चॉकलेट केक लेकर आया होगा और तुझे चॉकलेट केक नहीं पसंद ना। एंड मैंने बस ये फोन कॉल सुना और मेरी आंखों में आंसू आ गए। जस्ट दैट कि आप जितने रॉ स्कूल कॉलेज में होते हो ना दोस्तों के साथ, जिस तरीके से वो आपको जानते हैं, बाद वालों को शायद आप बताना भी नहीं चाहते, और वो बॉन्ड बन पाता है या नहीं, इट डिपेंड्स यू नो टोटली। लेकिन हाँ, ये चीज मुझे याद आई तो मुझे लगा आपके साथ जरूर शेयर करूं, क्योंकि कभी कभी ना बहुत सारी भीड़ के बावजूद भी फील होता है अकेला, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपके पास आपके दोस्त हैं पुराने वाले, प्लीज उनसे चिपक के रहो, चाहे वो इरिटेट हो जाएं आपसे, बट कल्ले रहने से तो अच्छा है ना। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची कैफे, मैं हूँ आपके साथ पारुल, इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: सर ऑफिस में किसी को मेरी वैल्यू पता नहीं है, क्या करूं?
1: ब्रो यार इट्स सो सिंपल, कल ऑफिस में सबको अपनी सैलरी बता दे, एवरीवन विल नो योर वैल्यू।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: द शो स्टार्ट्स इन 5 4 3 2 1 गो।
2: कभी कभी इन चार्ट्स को एक सिंपल काउंटडाउन की तरह सुनना थोड़ा अनफेयर लगता है because every song on this list is actually a time machine. एक गाना आपको इस हफ्ते के बॉलीवुड में ले जाता है और अगला ही गाना बिना वार्निंग के 10 साल पीछे. कभी कोई पुरानी आवाज अचानक वापस आ जाती है, कभी एक नया सिंगर किसी पुराने एहसास को अपनी नई सांस दे देता है, और कभी एक ऐसा गाना जिसे हमने सोचा था कि हम भूल चुके हैं, पता चलता है वो तो बस दिल के किसी कोने में सो रहा था. शायद इसलिए बॉलीवुड को सिर्फ न्यू और ओल्ड में बांटना मुश्किल है. यहाँ पास्ट भी हर वीक नए सिरे से रिलीज होता है और फ्यूचर भी कभी किसी पुराने गाने की शक्ल में लौट आता है. और आज के मिर्ची टॉप 20 में वक्त थोड़ा ज्यादा ही उलझा हुआ है. कुछ आवाजें वापस आई हैं, कुछ पुराने रिश्ते वापस आए हैं, और कुछ गाने अपनी जगह से कई बड़े हो चुके हैं. तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते बॉलीवुड हमें किस जमाने में लेके जा रहा है. इट्स मी सुरेन, दिस इज द मिर्ची टॉक 20 एंड वी आर स्टार्टिंग विद द गाना व्हिच इज ऑन नंबर 20, धुरंधर का आरी आरी
3: नंबर 20.

0: सुपरस्टार होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? ऑडियंस जब आपकी एक इमेज बना लेती है तो उस इमेज के कंफर्ट जोन से बाहर निकलना एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। अक्षय कुमार ने अपने 35 साल के करियर में ये रिस्क बार बार लिया है। पहले एक्शन हीरो, देन रोमांटिक लीड, फिर कॉमेडी स्टार, उसके बाद पेट्रियोटिक फेस। उन्होंने खुद एक बार बताया था कि करियर के एक दौर में जब वो हर फिल्म में सिर्फ डिशुम कर रहे थे, तो एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें एक अजीब सा डर लगा था।
1: एक दिन महसूस हुआ यार कि मैं सिर्फ एक बोरियत से आने लगी, और क्या मैं इसी के लिए बनाऊं कि सिर्फ एक्शन ही करना है, मैंने और कुछ नहीं करना, मैं और भी कुछ कर सकता हूं। महसूस हुआ अपने अंदर ये घिन आने लगी यार कि मैं कुछ और भी तो कर सकता हूं। बाकी सब एक्टरों को एक्टर बुलाते हैं, मुझे एक्शन बुलाते हैं, बस एक्शन का किंग कर लो, ये कर लो, इसको बुला लो, इसको स्टंट करवा लो, स्टंट मैन है मैं, यार करूंगा। आई थॉट इन माई माइंड आई हैव टू नाउ Change myself. I have to take a risk.
0: अक्षय ने अपने चेहरे में एक इमेज की जेल को देखा। आज हैवान में अक्षय कुमार एक डार्क सीरियल किलर के रूप में उस इमेज से एक बार फिर भाग रहे हैं। और इसी डार्क वर्ल्ड के बीच प्रीतम नाय ने एक बहुत ही मेलोडिक कॉन्ट्रास्ट दिया है शान और सुखविंदर सिंह की आवाज में। मूवी में सैफ अली खान पर पिक्चराइज ये गाना एक पुराने दौर के सुकून को लौटा कर लाता है। नंबर 18 पर डेब्यूइंग दिस वीक, दिस इज रंगियारा फ्रॉम हैवान। नंबर 18।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Burga, burga. Na vidva burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Is that Mr. Vipul?
1: Yeah.
2: Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from... com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
1: हाँ हाँ बोलिए।
2: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट? तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छी सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
1: बट इसमें करना क्या होगा?
2: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? डेजिग्नेशन क्या है आपका?
1: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
2: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
1: फाइन।
2: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
1: मिलता है।
2: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
1: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
2: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो के मैनेजर हैं, जो के सीनियर मैनेजर हैं, जो के सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी है, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
1: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे माँज सकते हैं।
1: Have you gone mad?
2: आपने पॉटी लगाई बच्चे की कभी?
1: Talking about?
2: और इसमें
1: क्या बकवास कर रहे हैं?
2: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं तो आपको हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा।
1: डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग। ओके,
2: मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
1: हेलो
2: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
1: हाँ, हु आर यू?
2: सर मनीष।
1: हु आर यू?
2: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
1: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
2: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं। मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी डाल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे, मैंने मुर्गा बनाया है, आपका पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek sham, ek stage aur do kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah.

पिया बॉलीवुड का सबसे फेवरेट रोमांटिक वर्ड, लेकिन कभी सोचा है कि रोजमर्रा की जिंदगी डेली लाइफ में हम इस वर्ड को बिल्कुल नहीं यूज करते। रियल लाइफ में अगर आप किसी को पिया बोल दोगे ना तो वो शायद शर्मा जाए या फिर आप पर शक करने लगे, लेकिन हिंदी सिनेमा ने पिया को कभी रिटायर नहीं होने दिया। 90s में फाल्गुनी पाठक ने इसे पॉप कल्चर का रिदम बना दिया था। Then 2000s में राहत फतेह अली खान ने इसे सूफी पोएट्री का रूप दे दिया।

बॉयफ्रेंड वर्ड प्रैक्टिकल है, पार्टनर वर्ड कॉर्पोरेट लगता है और लव वर्ड थोड़ा रिस्की है, लेकिन पिया में रोमांस के साथ एक अलग ही पोएट्री है। और आज इतने सालों बाद प्यार को शायद नाम से ज्यादा एक सवाल की जरूरत है, जब दिल चाहता है कि सामने वाला बिना कहे सब समझ जाए। सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया की एक फिल्म आ रही है वन, लेकिन इसमें एक ऐसा गाना है विच ब्रिंग्स बैक द कोलैबोरेशन ऑफ सिद्धार्थ एंड जुबिन नौटियाल दैट गिव अस राता लंबिया इन शेरशाह एंड तुम ही आना इन मरजावा। इस बार दे ब्रिंगिंग अस अ गाना जहां फोकलोर और जज्बात मिलते हैं। नंबर 14 पर डेब्यू कर रहा है समझो ना फ्रॉम वन। नंबर 14।

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
1: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
3: क्या?
1: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: Mitchie, it's hot.
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: Only on Mirchi. It's hot. Number 4.

0: इतने हफ्तों से गहरा हुआ का नंबर 3 पर बने रहना इस बात का प्रमाण है कि धुरंधर ने रणवीर सिंह के करियर को दो हिस्सों में बांट दिया है, बिफोर धुरंधर एंड आफ्टर धुरंधर। और रणवीर की इस जर्नी को देखकर मुझे 2011 का रणबीर कपूर याद आता है। रॉकस्टार से पहले रणबीर एक बहुत ही प्रॉमिसिंग यंग स्टार थे, लेकिन इम्तियाज अली की उस फिल्म ने रणबीर के अंदर की सारी बेड़ियां तोड़ दी। नाउ मजेदार बात यह है कि इम्तियाज अली ने जब रॉकस्टार लिखी थी, ओरिजिनली उनके दिमाग में रणबीर थे ही नहीं।
1: रणबीर कपूर को फिल्म में लेने का कोई सवाल नहीं उठता था जब मैंने रॉकस्टार लिखी थी। पहले मैं जॉन इब्राहिम के साथ वो फिल्म बनाने वाला था। एक्चुअली जब मैंने मूवी लिखी, रणबीर कपूर एक्टिंग नहीं कर रहे थे। सोचा ना था कि बनने में 4 साल लग गए थे, और उसमें मुझे अपने आप को पागलपन से बचाने के लिए कुछ रेलेवेंट काम करना बहुत जरूरी था। तो इस चक्कर में मैं स्क्रिप्ट्स लिखा करता था, उसमें से एक स्क्रिप्ट थी रॉकस्टार। मेट रणबीर अ कपल ऑफ टाइम्स, फिर हम लोग दोनों ने फैसला किया कि हम कुछ साथ में बनाएं। उसके बाद फिर मैं उनके घर गया एक कहानी सुनाने के लिए, तो उसने कहा कि अच्छा आपकी मैंने एक कहानी सुनी है, तो उस कहानी में एक रॉकस्टार होता है। फिर उसने मुझे नरेट किया, दिस इज अ यूनिक नरेशन वेयर आई वेंट टू मीट एन एक्टर एंड द एक्टर नरेटेड द स्टोरी टू मी।
0: जॉन इब्राहिम से शुरू हुई स्क्रिप्ट जब 24 साल के रणबीर तक पहुंची तो एक डायरेक्टर को अपना जॉर्डन मिल गया। जॉर्डन को हीरो नहीं था वैसे, वो गुस्से, वल्नरेबिलिटी और सेल्फ डिस्ट्रक्शन का एक तूफान था। रणबीर ने जॉर्डन को एक्टिंग से नहीं अपनी रगों से जिया था। उस दिन के बाद इंडस्ट्री ने रणबीर से पूछना बंद कर दिया कि आप क्या कर सकते हो, और देखना शुरू कर दिया कि आप कितना दूर जा सकते हो। टुडेज पिक ऑफ द वीक इज द

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: शिल्पा राव, आपका तो हर गाना हमारा फेवरेट है, लेकिन इस बारिश में आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
4: आई लाइक दैट सॉन्ग।

0: एक पॉकेट द फिल्म्स नेम।
1: फिल्म का नाम था थक्षक और इस गायक का नाम शिल्पा राव। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: दिस शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
5: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

नंबर दो पर चुनरी चुनरी का चढ़ना एक मैडनेस है यार। रिलीज के इतने महीनों बाद भी ये गाना रुकने को तैयार ही नहीं है। लेकिन नंबर वन पर जो गाना बैठा हुआ है काफी कंफर्टेबली, उसके साथ मेरा एक बहुत पर्सनल कनेक्शन है। मैं कोई क्लासिकल म्यूजिशियन नहीं हूँ, मुझे म्यूजिक की टेक्निकलिटी समझ नहीं आती है, कंपोजिशन के अंदर क्या क्या जाता है आई डोंट नो। लेकिन हाल ही में मैंने तेरा मेरा रिश्ता का एक अलग ही वर्जन सुन लिया, एक सूफी कव्वाली वर्जन, नियाजी निजामी भाइयों की आवाज में।

फिल्म का ओरिजिनल वर्जन एक अकेले टूटे हुए आदमी की खामोश दुआ है, जैसे रात के सन्नाटे में कोई खुदा से अकेले में कुछ पूछ रहा हो। लेकिन कव्वाली वर्जन में वही दर्द एक महफिल का हिस्सा बन जाता है। हारमोनियम की गहरी सुरीली पत्ती के ऊपर जब तालियां और कोरस जुड़ता है तो लगता है जैसे एक इंसान की तन्हा पुकार को पूरी महफिल ने अपनी आवाज दे दी हो। सिंगल वॉइस अंदर खींचती है, कव्वाली उस दर्द को बांट लेती है, और शायद यही पहचान होती है ऑफ दीज ग्रेट सॉन्ग्स। सिंगर्स बदल जाए, अरेंजमेंट बदल जाए, जमाना बदल जाए, लेकिन जज्बात वो कभी नहीं बदलते। 19 साल बाद भी ये गाना किसी एक फिल्म का नहीं, हर टूटे और जुड़े दिल का है। Still reigning at number one, this is तेरा मेरा रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जो है 19 साल पुराना।

0: कुछ गाने चार्ट से निकल जाते हैं लेकिन हमारी मेमोरी से कभी नहीं निकलते, इसलिए हम बार बार उनके पास खींचे चले आते हैं, हर बार अपने अंदर का एक नया पन्ना पढ़ने के लिए। अगर इस बार के मिर्ची टॉप 20 में आपको अपनी कोई पुरानी याद, कोई अधूरी बात या कोई नया एहसास मिला हो तो समझ लेना कि हमारा सफर पूरा हो गया है। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम आई मीट यू हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20, दिस इज सिरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मेरा हस्बैंड मेरी बात ही नहीं सुनता, क्या करूं?
1: अरे तो टेंशन काहे को ले रही है, उसको ना साइन लैंग्वेज में समझाना, नहीं तो लिख के दे दे।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: वेल आफ्टर दिस लवली ट्रैक चलिए बढ़ते हैं आगे और थोड़ी काम की बातें करते हैं. Rather, आपके फायदे की बात यानी गोल्ड रेट्स देखते हैं अब.
1: गोल्ड अपडेट.
0: वेल आज का गोल्ड अपडेट ऐसा कहता है पैम्प 1 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 579 कतरी रियाल, पैम्प 5 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 2711 कतरी रियाल, 10 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 5352, वेयर एज 1 ounce गोल्ड बार इज फॉर 16543 एंड 10 तोला गोल्ड बार इज फॉर 61432 कतरी रियाल. वेल ये थे आज के गोल्ड रेट. सोना लेना हो या ना लेना हो भाव पर जरूर हमेशा रहनी चाहिए और अगर नजर है आपकी तो फिर आप देखोगे ट्रेंड के कुछ दिन से ये गिरते जा रहा है. प्रॉबेबली द राइट टाइम टू बाय. माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ और मिर्ची इट्स हॉट.
2: स्टे अहेड ऑफ टुडेज गोल्ड रेट्स विद अल फरदान एक्सचेंज, पैम्स ऑफिशियल एजेंट इन कतर. बाय ऑथेंटिक स्विस मेड 24 कैरेट पैम्प गोल्ड बार्स
3: एंड अर्न कतर एयरवेज एवियोस टुडे.
2: विजिट आवर ब्रांचेस और डाउनलोड द ऐप नाउ.

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana.
2: Rabana.
1: Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello.
4: हेलो किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: बोल रहा हूँ
4: किरण पाल जी से बोल रहा हूँ, आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग पे बिल जा रहा है, आप ये पे नहीं कर रहे हैं आपको?
3: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
4: जी सर पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
3: 23
4: एक सेकंड सर। सर आपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
3: हाँ जी हाँ जी।
4: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
3: बिल आया था 2200 रूपए का?
4: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए है ना?
3: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
4: हाँ हाँ वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
3: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
4: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
3: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात चिल्लाके भी की जाती है।
4: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया है, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
3: अरे फोन काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
4: हूँ मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर। आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
3: चिल्लाने का क्या मतलब है?
4: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपको, मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
5: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
3: हेलो
4: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
3: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
4: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
3: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार।
4: नहीं तो आप ये बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज। सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है, मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे और चिल्ला।
3: कुकड़ों को
4: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ और बड़ा ही एक अमेजिंग सा वाक्या हुआ। ऑफिस से घर जा रहा था, गाड़ी लेकर नहीं आया था, तो एक ऑटो बुक किया। ऑटो में बैठा तो उन्होंने दिख गया उन्हें कि रेडियो मिर्ची से हूँ, क्योंकि बुक वहीं से करी थी। तो कहने लगे, अरे अच्छा आप आरजे हैं। उसके बाद अंग्रेजी में बात करने लगे। मैंने बोला, अरे अच्छा जी, तो बातचीत करी। तो उन्होंने बताया कि मैंने केमिस्ट्री पढ़ रखी है और मेरे पास ये ये ये ये डिग्री हैं। डिग्री गिनाने लगे। मैंने बोला, क्या हुआ फिर, आप ऑटो चला रहे हैं क्या? तो उन्होंने कहा, जिंदगी के हालात हमें यहाँ पे ले आए हैं छोटे, अब क्या सुनाए तुम्हें अपनी जिंदगी की कहानी। ज्यादा तो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन लाला माधव राम जौहर साहब का एक शेर याद आ गया मुझे उनकी बात सुन के। कह गए कि जर्रा समझ के यूं ना मिला मुझको खाक में, जर्रा समझ के यूं ना मिला मुझको खाक में, ए आसमान मैं भी कभी आफताब था। आफताब बोले तो सन है ना। जर्रा समझ के यूं ना मिला मुझको खाक में, ए आसमान मैं भी कभी आफताब था। तो कई बार जब आप प्रिज्यूम करते हैं कि कोई इंसान क्या हो सकता है, अगर आप उसकी जिंदगी को ना जानते हो तो प्रिज्यूम ना ही करना बेहतर है। रेडियो नुमिर्ची ताशी आपके साथ, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ डिस्कवर करो वर्सटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
1: The show was absolutely amazing.
2: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
3: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल. बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snuno. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स. द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव.

वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन 89.6। और देखिए वक्त आ गया कि आपका फायदा ही करा दूं आज। बात तो सही है, बेस्ट एक्सचेंज रेट तो यही मिलने हैं, यानी आईपे पर। वैसे जैसे आज का एक्सचेंज रेट ही देख लो यार, एक कतरी रियाल के बदले आपको मिल रहे हैं इंडियन रुपीस, दैट इज 26.28। हाँ, इतना बढ़ गया है। फिर उसके बाद में अगर पाकिस्तानी रुपीस की बात करें तो 76.08 पर है। देन वी हैव द बांग्लादेशी टाका विच इज एट एग्जैक्टली 33.75। और अगर श्रीलंकन रुपीज की बात करें तो एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं 90.98। एंड नेपाली रुपीज इज एट 42.01। ये थे आज के एक्सचेंज रेट। घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां एंड खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला 89.6 विच यू वन एंड सिंपली आफ्टरनून के साथ, माइक से दिल तक। इट्स हॉट।

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर्स गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू।
1: कि आपका ताशी रूबरू कराए आपको हमारे आज के फनकार, हमारे आज के शायर कुमार पाशी साहब से। अब ये बिल्कुल मेरा ही पिछला जन्म हो सकते हैं, 1935 से 1992 तक जिए कुमार पाशी साहब, दिल्ली में रहे और बड़े ही प्रोमिनेंट मॉडर्निस्ट पोएट रहे, जो कि एक लिटरेरी मैगजीन आती थी सतूर, उसके भी संपादक रहे। और एक बड़ा ही खूबसूरत शेर है उनका जो मुझे बड़ा पसंद है। लिखते हैं कि कुछ गजलें उन जुल्फों पर हैं, कुछ गजलें उन आंखों पर, कुछ गजलें उन जुल्फों पर हैं, कुछ गजलें उन आंखों पर, जाने वाले दोस्त की अब एक यही निशानी बाकी है। वाह वाह वाह वाह। और आप दिल्ली में रहे और बड़े ही प्रोमिनेंट मॉडर्निस्ट पोएट रहे, जो कि एक लिटरेरी मैगजीन आती थी सतूर, उसके भी संपादक रहे। और एक बड़ा ही खूबसूरत शेर है उनका जो मुझे बड़ा पसंद है। लिखते हैं कि कुछ गजलें उन जुल्फों पर हैं, कुछ गजलें उन आंखों पर, कुछ गजलें उन जुल्फों पर हैं, कुछ गजलें उन आंखों पर, जाने

0: जोहर हु स्पोक लाइक अ ट्रू ब्लू मुंबईकर. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: करण जोहर, ऑनेस्टली बताइए, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द मॉनसून?
2: बारिश का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ कि आसमान के आंसू अभी गिरने लगे हैं। ऑलवेज लुक एट मॉनसून के ये बस उनके आंसू हैं, तो वी हैव टू पहुंच जाए जल्दी तो क्या। बट आई नो के रेन और बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन महीने में हमेशा, ये मेरे फेवरेट महीने नहीं है साल के।
1: ये थे

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। और एक शख्स से मुलाकात हुई, बड़े प्रैक्टिकल टाइप के इंसान थे, और थोड़ी देर बैठे तो हमें ज्ञान देने लगे। कह रहे थे कि अरे क्या आप ये उर्दू अदब शायरी इश्क विश्क के चक्कर में पड़े रहते हैं, प्रैक्टिकल दुनिया है, गला रेत देती है ये दुनिया, ऐसा वैसा, यू नो, ज्ञान दे रहे थे बेसिकली, है ना। तो जहन में हमारे एक शेर तो गौंधा, और जाते जाते हमने वो शेर उन्हें चिपका ही दिया। समीना राजा साहिबा का शेर है, आपको नजर कर रहे हैं। कहती हैं कि शायरी झूठ सही, इश्क फसाना ही सही, शायरी झूठ सही, इश्क फसाना ही सही, जिंदा रहने के लिए कोई बहाना ही सही। तो भाई हर कोई अपने अपने बहाने से जी रहा है, क्यों उनकी जिंदगी में जाके टांग अड़ानी है कि नहीं। स्टेडियम डूमर्ची, इट्स हॉट।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ और आ गया है मेरा पसंदीदा हिस्सा
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: हाँ जी, और आज के ताशी अनप्लग्ड में आपको सुनाएं बुल्ले शाह साहब का लिखा हुआ, जो कि एक बड़े ही रेवर्ड हमारे सूफी पोएट हुए पंजाब से 17th century में, उनका लिखा हुआ एक ऐसा गाना जो कि सदियों दर सदियों रिक्रिएट होता आया है और आज भी हम सबकी जबान पे है। दिस इज तेरे जे अहोर दिस दा।

अगर आपको ये नगमा पसंद आया हो तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर, और वहां आपको मिल जाएंगी मेरी आवाज में कई सारी गजलें, कई सारे ऐसे ही नगमे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, बने रहें अपने ताशी के साथ। इट्स हॉट।

0: कुछ फिल्में ना आपके लिए दाल चावल वाला कंफर्ट लेके आती है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप। एंड यस, अगर आप नो एंट्री के फैन रहे हैं तो आपको पता होगा कि दाल चावल के अलावा लोग जो हैं वो बिरयानी की तलाश में भी बाहर निकलते हैं। लेकिन फिलहाल तो मैं बिरयानी की बात कर ही नहीं रही, मैं तो दाल चावल अपने कंफर्ट फूड की बात कर रही हूँ यार, जिससे मैं पर्सनली कभी बोर नहीं हो सकती। क्योंकि मतलब दिस इज समथिंग दैट यू कांट सर्वाइव विदाउट। आप डेली बिरयानी खाकर तो मजा नहीं कर सकते ना, पेट तो कभी तो खराब हो ही जाएगा आपका। ठीक वैसे ही कुछ फिल्में होती हैं जो आपके लिए दाल चावल वाला कंफर्ट दे जाती हैं। आप उन फिल्मों से कभी बोर नहीं हो सकते। इनफैक्ट आप किसी भी मूड में हो, किसी भी जोन में हो, बस वो फिल्म लगाएंगे और एक बोलते ना कि यू गो बैक टू योर होम, मतलब वैसी वाली फीलिंग आ जाती है। तो आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भाई आपके लिए वो कंफर्ट फिल्म कौन सी है जिसको आप कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल, टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। मैं हूँ आपके साथ श्रुति, इट्स हॉट।

0: Milci. Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
1: Milci, murga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: हाँ जी कौन?
2: हाँ जी कौन?
3: हेलो, किससे बात करनी है?
2: बात करनी है
3: भैया? किससे बात? अबे
2: किससे बात करनी है
3: भैया? नंबर चेक करके,
2: नंबर चेक करके दोबारा मिला?
3: पागल
2: पागल,
3: पता नहीं कौन बोल रहा
2: है, पता नहीं कौन बोल रहा
4: था। इको आ रहा है, इको।
3: हेलो
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो, जय साल भैया को मारूंगा तुझे, मैं बता रहा हूँ
3: भैया। नंबर चेक,
2: नंबर चेक के मिला।
3: हेलो
2: हेलो
3: भैया, क्यों परेशान कर रहा,
2: क्यों परेशान कर रहा है किसी को? पागल हो गया क्या यार?
3: पता नहीं कौन
2: है, पता नहीं कौन फोन करे जा रहा है, फोन करे जा रहा है। अबे पागल हो गया क्या यार? महंगा पड़ जाएगा, नंबर आ गया मेरे पास, पागल कहीं का।
4: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया। क्या नाम है सर आपका? आप बुरा मत मानिएगा प्लीज।
3: रवि
4: है। रवि, रवि मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आप एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे, उसमें एको नहीं आएगी।
3: कुकड़ू
4: को भाई, कुकड़ू को बहुत परेशान कर दिया आपने
3: भाई।
4: आप खत्म कर दो यार।
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: दिस शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah, live.

0: भाई कुछ फिल्में ना मम्मी के प्यार के जैसे होती हैं, एवरग्रीन फॉर यू।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, और जैसे आपकी मम्मी का प्यार आपके लिए अलग है, वैसे ही हर इंसान की मम्मी का प्यार उसके लिए अलग है। एंड ये रेफरेंस मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एंटरटेनमेंट भी कुछ इसी तरीके से चलती है यार। क्योंकि अगर आपको कोई फिल्म पसंद है तो दूसरे को वो फिल्म पसंद हो जरूरी नहीं, बट उसकी पसंद कुछ और भी हो सकती है। ये तो बड़ी ही बेसिक सी बात कर दी श्रुति, लेकिन कभी कभी हम ये बेसिक्स भूल के सामने वाले को जज करने लगते हैं। इसलिए आज मैंने सोचा है कि भैया आपके पसंद की बात करेंगे। आई वेंट डाउन टू माई ऑफिस पीप्स और मैंने उनसे पूछा कि भाई वो कौन सी फिल्म है उनके लिए जिससे वो कभी बोर नहीं हो सकते, हर बार उसी लेवल पे इंटरेस्ट के साथ देखते हैं वो। सो अर्जित इज विद मी।
3: गोविंदा की कोई भी फिल्म आप उठा लो, तब आपको बहुत अच्छी लगती थी, अब शायद आपको एम्बैरेसिंग स्लैश क्रिंज लगे। प्लस डायलॉग्स डॉली डॉली डॉली डॉली डॉली और एक टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग, पता नहीं वो आदमी क्या करता था, एक पूरी फिल्म ऐसे बात की उसने। सो गोविंदा और गोविंदा की सारी फिल्में।
0: क्या बात है, आई आई कैप्टन, मुझे भी गोविंदा की कोई भी फिल्म किसी भी वक्त दिखा दो, आई विल बी मोर देन हैप्पी। इनफैक्ट अगर कोई लड़का मुझे इम्प्रेस करना चाहता है तो हम गोविंदा की फिल्मों पे मूवी मैराथन कर सकते हैं, ठीक है? ओके वैसे अभी और भी कुछ दोस्तों से बातचीत की है अबाउट द सेम, बट वो कॉन्वर्सेशन लेकर आऊंगी कुछ ही देर में। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, मैं हूं आपके साथ।

0: देखो प्यार में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, लेकिन प्यार से कभी आपका मन नहीं भर सकता।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और ठीक वैसे ही हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई एक फिल्म ऐसी होती है जिससे उसका मन कभी भी नहीं भर सकता। और आज आपकी कुछ ऐसी ही फेवरेट वाली फिल्मों की बात कर रही हूँ। सो आई वेंट डाउन टू माई ऑफिस पीप्स, नाउ कृष्ण इज विद मी। बताओ दोस्त, तुम्हारे लिए तुम्हारी वो कौन सी फेवरेट वाली फिल्म है जो तुम कभी भी देख सकते हो?
3: ये दो फिल्म है जो मैं कभी भी देख सकता हूँ। पहली फिल्म है पार्टनर, क्योंकि उसमें गोविंदा और वो सलमान की वो जो केमिस्ट्री पूरी रहती है ना, बड़ी मजेदार सी थी। और वो इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई, वो हमेशा खुशी मुझे उस मूवी को देख के होती है। और दूसरी फिल्म है रब ने बना दी जोड़ी, तानी पार्टनर,
0: क्या बात।
3: जो वो पूरा केमिस्ट्री रहता है, आहा हा, मजा ही आ जाता है। और वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे उस पूरी मूवी का लगता है, सूरी पापे का जो दोस्त होता है बॉबी, मुबारक बधाइयां पचा के सूरी पापे को जो ट्रांसफॉर्म करता है, वो प्रोसेस बड़ा मजेदार रहता है। तो ये दो फिल्म मैं कभी देख सकता हूँ, मजा आता है, दिल खुश होता है।
0: तो आप समझ सकते हैं लोग अपनी उस फेवरेट फिल्म की बात करते करते ही कितने अच्छे वाले जोन में चले जा रहे हैं। तो फटाक द चिटाक आप भी मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कीजिए और अपनी फेवरेट फिल्म के बारे में मुझे जरा बताइए। टिल देन एंजॉय द अपकमिंग सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची। मैं हूं आपके साथ श्रुति, इट्स ऑल।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

0: महफिल, और इस महफिल में पाए जाने वाले दो प्रजाति के लोग बाबू मोशाय।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हेलो जी, हाय। सो ये वाली जो दो प्रजातियाँ हैं वो क्रिकेट लवर्स के मद्देनजर डिसाइड की जा रही हैं, जिसमें पहली प्रजाति के जो क्रिकेट लवर्स हैं बाबू मोशाय, ये इंडिया स्पेसिफिक लवर्स हैं। मतलब अगर मैच इंडिया का हो तभी ये अपने टेलीविजन स्क्रीन के सामने नजर आएंगे, या फॉर दैट मैटर स्टेडियम में जाके मैच देखना चाहेंगे। लेकिन जो दूसरी प्रजाति के महानुभाव है, ओहो, अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की चूल्हे इनके अंदर क्रिकेट वाली, क्योंकि ये टूर्नामेंट कोई भी हो, मैच किसी का भी हो, एक एक बॉल की खबर रखते हैं। और गलती से अगर आपने इन दूसरी प्रजाति वालों के साथ क्रिकेट कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश की तो भैया आपको अपनी औकात याद आ जाएगी और आपको ABC ऑफ क्रिकेट एक बार फिर से सीखने की जरूरत पड़ जाएगी। तो आप बताइए इन दोनों में से किस कैटेगरी में आते हैं आप? MIRCHISHRUTI, यानी मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पर कनेक्ट करके बाकी बातें कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अनु मलिक, आपको देख के लगता है कि जब आप पैदा हुए ना, आपने पहले मम्मी कहा ना पापा। आपने कहा होगा देखो बारिश हो रही है। But really, tell us, how old were you when you made the song?
2: What, I was 25 or something. It was raining cats and dogs. Waterfall से पानी गिर रहा था। सारे बादल नीचे आ चुके। And उस बीच में then I saw the little train coming out. देखो बारिश हो रही है। देखो ना देखो, it's raining, it's raining, it's raining.
1: अब Twinkle Twinkle Little Star और बाबा ब्लैक शीप के साथ में ये वाला गाना तो ऐड कर ही लेना चाहिए स्कूल्स में, है ना अनु मलिक? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स आउट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी? फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: मेरी बीपी कभी मुझे सीरियसली लेती ही नहीं, क्या करूं?
1: तो प्रभु क्या है ना कि आप तुरंत ही हॉस्पिटल की ओर प्रस्थान करें, सीरियस लोगों को ना वहीं ले जाया जाता है।

0: ऐसी अप्रोच वाली मूवीज की कमी है हमारी इंडस्ट्री में।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हाँ जी बाबू मोशा, इससे पहले कि आप कंफ्यूज्ड हो जाएं, लेट मी टेल यू, मैं बात कर रही हूँ विमेन सेंट्रिक इश्यूज पे बनने वाली फिल्मों के बारे में। और आज जो पांच कपंच की लिस्ट के थ्रू मैं पांच फिल्मों को डिस्कस करने वाली हूँ, दीज आर बेसिकली इंडियन शॉर्ट फिल्म्स जो आपको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर डालना चाहिए। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द मूवी चटनी, जिसको डायरेक्ट किया है ज्योति कपूर दास ने। इसका स्क्रीन प्ले लिखा था ज्योति कपूर, इसका चोपड़ा और अवनीश मिश्रा ने मिलकर और एक्टिंग की है फिल्म में टिस्का चोपड़ा, रसिका दुग्गल और आदिल हुसैन ने। सो द फिल्म पीप्स इनटू द सीमिंगली मॉरल वर्ल्ड ऑफ ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास फैमिली, जहां अब नए एस्पिरेशंस हैं ऑफ इंपोर्टेड कार्स एंड ऑर्गेनिक फूड। और इसी बीच एक कहानी चलती है इस महिला की, जो दूसरी एक फीमेल से कॉन्वर्सेशन कर रही होती है। और माइंड यू, ये दूसरी फीमेल जो है वो पहली वाली महिला के पति के साथ फ्लर्ट करती नजर आती है इन अ पार्टी। उसके बाद चीजें किस तरीके से डार्क साइड लेती हैं वो जानने के लिए आपको ये फिल्म तो देखनी पड़ेगी यार। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच चटनी ऑन Amazon Mini TV। बाकी ऐसी ही और चार फिल्मों की बातें बाकी हैं, बट इन अ वाइल। टिल देन यू एंजॉय द अपकमिंग सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी, जिसका नाम है श्रुति।

0: Mirci.
1: Iskabala, puskabala, sakabala. Yabala. Burga, burga. La vizba la burga. Mirci, burga.
2: हेलो,
3: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
2: स्पीकिंग.
3: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ.
2: हाँ, sure.
3: अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
2: जी.
3: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं. आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
2: बोल, कौन रहे हैं?
3: मैं जयदेव बोल रहा हूँ, और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं. अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज.
2: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है. जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
3: बिल्कुल
2: अलाउ नहीं करते. जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे.
3: सही बात है,
2: गर्ल्स को नहीं देंगे.
3: सही बात कह रही हैं. और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई.
2: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है.
3: एक सेकंड होल्ड करिएगा. तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती, पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार. शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ. मैं, हाँ,
2: आप किस से बात कर रहे हैं?
3: मैं, वो मेरी वाइफ है यही.
2: हेलो.
3: हाँ बोलिए.
2: हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधारिए.
3: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ.
2: नहीं, आप मेरे से तो
3: नहीं,
2: बातें सही से कर रहे हैं.
3: हाँ?
2: नकली तरह से आप मेरे से
3: नहीं,
2: बातें कर
3: नहीं
2: रहे हैं.
3: नकली तरीके से क्या?
2: नहीं, असली मुझे दिख रही है. असली वाइफ से बात कर रहे हैं?
3: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार.
2: तो कोई बपौती है क्या? कैसे बात कर रहे हैं?
3: नहीं, बात नहीं, तमीज सीख ले. नहीं, तमीज
2: नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं सुननी है.
3: मेरी बात सुनिए. देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए आप रेडियो मिर्ची पे. आपका मुर्गा बन गया.
2: Okay.
3: और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
4: This show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
6: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल. बुक योर टिकट्स नाउ एट STTSNUNU. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स. द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव

0: ऐसी अप्रोच वाली फिल्में हमारी इंडस्ट्री में और आनी चाहिए।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हाँ जी बाबू मोशाय, मैं बात कर रही हूँ फीमेल सेंट्रिक इश्यूज को लेकर बनी फिल्मों के बारे में, जिसकी कमी ऑफ कोर्स हमारी इंडस्ट्री में है। बट आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं आपके वॉच लिस्ट में कुछ अमेजिंग शॉर्ट फिल्म्स ऐड करने वाली हूँ विच रिवॉल्व अराउंड विमेन सेंट्रिक इश्यूज। सो सबसे पहले इन द लिस्ट वी टॉक्ड अबाउट द मूवी चटनी। अब नंबर दो पे बात करते हैं द ब्रोकन टेबल के बारे में, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2023, डायरेक्टेड बाय चिंतन सारदा। एंड इस फिल्म में नासिरुद्दीन शाह है एज गिरी और उनके साथ है रसिका दुग्गल हु इज प्लेइंग द पार्ट ऑफ दीप्ति इन द मूवी। सो बेसिकली गिरी का जो कैरेक्टर है, ही इज एन अल्जाइमर पेशेंट जो अपनी जिंदगी की सारी चीजें भूल जाते हैं अदर देन हिज वाइफ। वहीं दूसरी तरफ दीप्ति इज अ बडिंग साइकोलॉजिस्ट जिसकी लाइफ में उसकी शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही हैं। बट वंस शी मीट्स गिरी, वो उनकी जिंदगी से बहुत सारी ऐसी चीजें सीखती है, अपने लाइफ में इनकलकेट करती है, जिसके बाद इस मूवी का एंड बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग लगता है। नहीं देखी है मूवी तो अपने वॉच लिस्ट में इसको जरूर डाल लो। नाम है द ब्रोकन टेबल। चलो नंबर तीन पे अब बात करते हैं अबाउट द फिल्म नीति शास्त्र, जो प्राइम वीडियो पे आपको मिलेगी। दिस मूवी रिलीज इन द ईयर 2018, जिसमें तापसी पन्नू है, विकी अरोड़ा है और ये फिल्म एक सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर की है, रोशनी है इसका नाम, प्लेड बाय तापसी पन्नू ऑफकोर्स, जो औरतों को मदद करती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने में। हाउएवर इसकी जिंदगी एकदम से उथल पुथल हो जाती है जब इसका खुद का सगा भाई एक क्राइम कमिट करता है एंड देन शी इज टोर्न बिटवीन हर इंटेग्रिटी एंड हर फैमिली। इंट्रीगिंग राइट? तो अपनी वॉच लिस्ट में नीति शास्त्र को भी जरूर ऐड कर लेना। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बाकी के दो फिल्मों को डिस्कस करेंगे। राइट ऑन मिर्ची, यू आर ट्यून्ड इन विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी जिसका नाम है श्रुति।

0: भाईला हमारी इंडस्ट्री में ऐसी फिल्में भी हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हाँ जी बाबू मोशाय, कुछ ऐसा ही रिएक्शन आया था मेरा जब मैंने ये फिल्में देखी थी। सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट 5 वुमेन सेंट्रिक इश्यूज पे बेस्ड शॉर्ट फिल्म्स जिन्होंने मुझे एकदम से झकझोर दिया था। तो चलो लिस्ट को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी चटनी, उसके बाद हमने नंबर 2 पे बात की द ब्रोकन टेबल के बारे में, नंबर 3 पे था नीति शास्त्र, अब नंबर 4 पे बात करते हैं एवरीथिंग इज फाइन के बारे में। वेल दिस मूवी रिलीज इन द ईयर 2017, जो फिलहाल आपको प्राइम वीडियो पे देखने को मिलेगी। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है मानसी निर्मल जैन ने, जिसमें सीमा पाहवा हैं और पालोमी घोष जैसे अमेजिंग एक्टर्स हैं यार। सो बेसिकली फिल्म में एक मिडिल एजेड वुमन है जिसका नाम है आशा, जो अपने अनहैप्पी मैरिज को खत्म करना चाहती है और अपनी बेटी के पास जाती है जिसका नाम है नताशा फॉर सपोर्ट। हाउएवर उनकी बेटी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती कि भाई उसकी माँ अपनी शादी खत्म करना चाहती है, एंड दस ट्राइज टू डिसवेड हर फ्रॉम डूइंग इट। ट्रस्ट मी व्हेन आई से इट इज अ मस्ट वॉच। चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नंबर 5 पे बात करते हैं अबाउट द फिल्म देवी, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2020, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है प्रियंका बैनर्जी ने, जो आपको Amazon Prime पे देखने को मिलेगी। फिल्म में है काजोल, श्रुति हासन, नेहा धूपिया, नीना कुलकर्णी, मुक्ता बारवे, शिवानी रघुवंशी, यशस्विनी दयामा, रमा जोशी एंड संध्या महात्रे। सो बेसिकली इस फिल्म में एक ग्रुप ऑफ वुमेन को फोर्स किया जाता है टू को एग्जिस्ट इन अ स्मॉल रूम, and mind you all of them are a victim of rape। और जिस तरीके से हर एक औरत की कहानी इस मूवी में बयां की गई है, goosebumps is what you can expect while watching it। खैर मेरी इस लिस्ट में अगर आप भी कोई फीमेल सेंट्रिक इश्यूज को डील करती हुई फिल्म ऐड करना चाहो, then feel free to do that। MIRCHISHRUTI, that is मिर्ची श्रुति के नाम से मैं आपको फेसबुक या फिर इंस्टा पे मिलूंगी। इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

ब्रेड पकौड़े की कसम रणबीर कपूर को रणवीर सिंह की तरफ से मैं थैंक्स बोल देती हूँ यार। अगर ब्रेड पकौड़े की कसम से आप ये नहीं समझ पाए कि मैं फिल्म बैंड बाजा बारात की बात करने वाली हूँ बाबू मोशराय, तो क्या खाक फिल्मी है आप? जरा इंटेक अपना बढ़ाइए मेरे शो का, देखिएगा फिर दिन दोगुनी रात चौगुनी किस तरीके से फिल्मी आपा आपके अंदर घुसता है। बट यस, टॉकिंग अबाउट दिस फिल्म जो रिलीज हुई थी साल 2010 में, जिसको डायरेक्ट किया था मनीष शर्मा ने और जिस फिल्म के साथ रणवीर सिंह ने अपना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री डेब्यू किया था, उसके लिए मैं रणबीर कपूर को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये फिल्म सबसे पहले रणबीर कपूर को ऑफर की गई थी, बट ही डिडंट वांट टू प्ले बिट्टू। लेकिन बाद में जब ये फिल्म इतना अच्छा परफॉर्म कर गई ना, तो रणबीर कपूर को रिग्रेट हो रहा था अपने उस डिसीजन पे। बट कोई नहीं, उनकी वजह से रणवीर सिंह को इतना अल्टीमेट लेवल का डेब्यू का मौका मिल पाया यार। बाकी अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो लेट मी टेल यू, फिल्म में रेडियो मिर्ची का जिक्र भी है, और सिर्फ जिक्र नहीं, बेसिकली जब बिट्टू और श्रुति के बीच में वो कांड हो जाता है ना, और बिट्टू श्रुति को लास्ट टाइम उसके घर ड्रॉप कर रहा होता है, तो ही इज लिसनिंग टू रेडियो मिर्ची, एंड स्पेसिफिकली हमारे आरजे नवेद बोल रहे होते हैं उनके कानों में। पता था आपको? चलो कोई नहीं, मैंने बता दिया ना। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑन।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: The late Irfan Khan से एक बार पूछा गया कि कहाँ की बारिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है? Is it Delhi? Is it Mumbai?
3: उसका मजा सिर्फ राजस्थान में है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ बरसात जो है देर से होती है। वहाँ जो है सावन को सेलिब्रेट किया जाता है, सावन भादो जो कहते हैं, यू नो, फसल भी कटती है और झूले लगते हैं। राजस्थान में जो है बरसात में भीगने का और बरसात का जो मजा है वो बहुत अलग है।
2: ऐसा एक दिन नहीं जाता जब इरफान खान का ख्याल नहीं आता। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोलडाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोलडाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
5: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बजने वाले हैं 3
2: टाइम चेक
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

पाकिस्तानी क्रिकेटर बन सकते थे हिंदुस्तानी एक्टर। हेलो जी, हाय बाबू मोशाय। अब इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी टेल यू, मैं बात कर रही हूँ अबाउट द फिल्म गैंगस्टर, जो रिलीज हुई थी 2006 में, डायरेक्टेड बाय महेश भट्ट। और इसी फिल्म के साथ कंगना रनौत ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया था। बाकी उनके अलावा मूवी में इमरान हाशमी और शाइनी आहूजा भी लीड रोल्स निभाते नजर आए थे। एंड यस, शोएब अख्तर इज द पाकिस्तानी क्रिकेटर जिनको इस फिल्म में एक किरदार ऑफर किया गया था, बट क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं थे टू एक्ट, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्म का जो एपिक गाना है या आली, वो पहले कैलाश खेर गाने वाले थे, बट ही वॉज ऑन एन इंटरनेशनल टूर जब इस गाने की रिकॉर्डिंग की जा रही थी, एंड दैट इज द रीजन उनको रिप्लेस करके फिर जुबीन गर्ग को गाने के लिए लिया गया। एंड भाई साहब, इस इंसान ने गाने को जिस लेवल पे पहुंचाया वो तो हम सब आज भी जानते हैं, बिकॉज इट स्टिल इज देयर इन आर प्लेलिस्ट। बाकी ऐसी ही आपकी कोई फेवरेट वाली फिल्म है तो उसका नाम मुझे बताइए, आई विल डू द होमवर्क फॉर यू। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La virtua la burga.
2: Milci, burga.
3: Hello.
4: Is that Mr. Vipul?
3: Yes.
4: Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from... com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
3: हाँ हाँ बोलिए।
4: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट?
3: ओके।
4: तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छी सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
3: बट इसमें करना क्या होगा?
4: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
3: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
4: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
3: फाइन।
4: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
3: मिलता है,
4: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
3: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
4: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो कि मैनेजर हैं, जो कि सीनियर मैनेजर हैं, जो कि सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
3: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
4: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं।
3: Have you gone mad?
4: आपने पॉटी लगाई है बच्चे कभी?
3: Talking about?
4: और इसमें
3: क्या बकवास कर रहे हैं?
4: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं, तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा।
3: डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग।
4: मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते हैं। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
3: हेलो
4: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना। सर मनीष, सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
3: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
4: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं, मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी डाल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मैंने मुर्गा बनाया है आपका, पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by iPay. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट STT Snoo Noo। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव

0: ये महफिल और इस महफिल में पाए जाने वाले दो प्रजाति के लोग बाबू मोशाय
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हेलो जी हाय। सो ये वाली जो दो प्रजातियां हैं वो डिसाइड की जा रही है गुस्सा करने वाले लोगों के मद्देनजर। जिसमें पहली प्रजाति का जो इंसान है इसको गुस्सा आता है तो वो शांत भी होता है, मतलब ये अपने आप को थोड़ा सेक्लूड करेगा फ्रॉम दैट सिचुएशन और अपने आप को धीरे धीरे करके, मतलब जो भी इसका प्रोसेस है ऑफ कूलिंग डाउन, ये उस प्रोसेस में लग जाएगा। लेकिन जो दूसरी प्रजाति के महानुभाव है ना, कभी कभी इनका दिमाग इस लेवल पे फिर जाता है कि ये गुस्सा करके खुद शांत तो हो जाते हैं ऊपर ऊपर से, बट अंदर से इनके अंदर वो गुस्सा इस लेवल का भरा होता है ना कि ये सोच लेते हैं कि आज तो कोई भिड़े, बस कोई भिड़े मेरे से, जो मेरे साथ लगेगा उसकी तो ऐसी की तैसी। वैसे मैं इनके बारे में इतने अच्छे से इसलिए जानती हूँ क्योंकि कभी कभी आई स्विच टू द सेकेंड कैटेगरी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

एक ऐसी फिल्म जिसका हर लीड कैरेक्टर नेगेटिव था। जरा जरा टच मी, आई एम श्योर आपने गेस कर लिया होगा, और अगर नहीं किया देन लेट मी टेल यू, मैं बात कर रही हूँ अब्बास मस्तान डायरेक्टोरियल फिल्म रेस बाबू मोशाय, जो साल 2008 में रिलीज हुई थी। और इस मूवी में सैफ अली खान, अक्षय खन्ना, अनिल कपूर, बिपाशा बासु, कटरीना कैफ और समीरा रेड्डी जैसे एक्टर्स थे। सो यस, इस फिल्म के जितने भी लीड कैरेक्टर्स आपको नजर आए हैं वो सारे नेगेटिव शेड के हैं, मतलब कोई एक मेन विलन नहीं था, सारे कहीं ना कहीं विलन का किरदार निभा रहे थे। इनफैक्ट अनिल कपूर ने पहली बार अपने करियर में अब्बास मस्तान के साथ काम किया था, और तो और फिल्म का एक एपिक नंबर ख्वाब देखे झूठे मूठे, ये गाना फिल्म के साउंडट्रैक के रिलीज होने के बाद रिकॉर्ड किया गया था। इन शॉर्ट ये गाना फिल्म को अलंकृत करने के लिए बनाया गया था। आई मीन उस बेसिस पे थोड़ा और लोग देखेंगे या फिर इंट्रीग होंगे अबाउट द मूवी, इफ यू नो व्हाट आई मीन। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: बहुत याराना लगता है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हाँ जी बाबू मोशा है, याराना फिल्मों का बॉक्स ऑफिस से इसकी बात हो रही है बेसिकली, क्योंकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस ही तो एक फिल्म का फेट डिसाइड करते हैं, उसका वर्थ डिसाइड करते हैं, राइट। बट आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी फिल्मों की बात कर रही हूँ जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पे तो कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, बट लेटर ऑन कल्ट स्टेटस मिला है इन फिल्मों को। वेल, लिस्ट में सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट मेरा नाम जोकर, उसके बाद बात करेंगे अंदाज अपना अपना, देन वील टॉक अबाउट जाने भी दो यारों, उसके बाद आएंगे अग्निपथ पे एंड देन सूर्यवंशम। तो सबसे पहले मेरा नाम जोकर से शुरू करते हैं। यार कंफ्यूज्ड हो आप? हाँ हाँ, ये लेजेंडरी मूवी जो है ये बॉक्स ऑफिस पे बहुत बुरी तरीके से पिट गई थी, मेकर्स को तो बहुत सारे लॉसेस भी झेलने पड़े थे, बट आज की डेट में इस फिल्म को सिर्फ कल्ट ही नहीं माना जाता, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंटली मेड फिल्म। इस फिल्म के गाने हों, इस फिल्म के डायलॉग्स हों, या फिर इस फिल्म का जो थीम था जहाँ एक जोकर, एक क्लाउन रोता है, अपने लाइफ में बहुत परेशान रहता है, कहीं खुशी नहीं ढूंढ पाता, बट स्टिल अपने ऑडियंस को हंसाता है। मतलब हम और आप ऑन अ डेली बेसिस जिस तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं, भले ही कितनी भी परेशानियां हो, बट वो स्माइल हमारे चेहरे पे होती है, बस इसी चीज को डिपेक्ट की थी एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी लाइन के साथ इस फिल्म ने। चलो लिस्ट में अभी और चार फिल्मों की बात होगी, बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल। टिल देन यू एंजॉय सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची विद द स्लट की बड़ी फिल्मी इट्स हॉट।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव.

0: खुशहाल की आवाज में वारू फॉरएवर, व्हाट अ लवली रोमांटिक ट्रैक दिस इज। इंटरेस्ट में कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो आपकी लाइफ में ऐसा लगता है जिसे एंटर कर गए, और उनमें से एक गाना मिर्जापुर का ये वारू फॉरएवर है। फिलहाल तो 4:04
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: जी लेकिन चेक करना है आप कतर के कोने कोने में, इवेंट से लेकर कतर के कोने कोने में क्या क्या हो रहा है। अब जहां कस्टम टैरिफ रेज किया गया है कुछ सब्जियों पे और चिकन पे, उसके अलावा हमारे विजिट कतर ने 2026-27 का इवेंट कैलेंडर लॉन्च कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने लॉन्च किए हैं 8 नई ई सर्विसेज, एंड MOCI क्यों कतरी रियाल 500 का ई कॉमर्स लाइसेंस लेके आए हैं 194 बिजनेस में, ये अगर जानना है तो बस मस्त वाला गौरव के साथ कान निकाल लो, वॉल्यूम बढ़ा लो, क्योंकि आ गए अब अगले 2 घंटे शाम शानदार में ढेर सारी बातें आपके काम की, मतलब कि हम यही लाते मिर्ची थॉट। हबीबी सलाम।
2: तो फिर

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
1: Mirchi, murga.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: हाँ जी कौन?
2: हाँ जी कौन?
1: हेलो, किससे बात करनी है?
2: किससे बात करनी है?
1: भैया किससे बात करनी है?
2: अबे किससे बात करनी है?
1: भैया नंबर चेक करके
2: नंबर चेक करके दोबारा मिला?
1: पागल
2: पागल
1: पता नहीं कौन बोल रहा
2: है, पता नहीं कौन बोल रहा है।
3: इको आ रहा है, इको।
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो, जैन साले भैया को मारूंगा तुझे, मैं बता रहा हूँ।
1: भैया नंबर चेक
2: नंबर चेक के मिला।
1: हेलो
2: हेलो,
1: भैया क्यों परेशान कर रहा,
2: क्यों परेशान कर रहा है किसी को? पागल हो गया क्या यार? पता नहीं कौन है, फोन करे जा रहा है, फोन करे जा रहा है। अबे पागल हो गया क्या यार? महंगा पड़ जाएगा, नंबर आ गया मेरे पास। पागल कहीं का?
3: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया। क्या नाम है सर आपका, आप बुरा मत मानिएगा प्लीज।
1: रवि है?
3: रवि, रवि मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आप एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे, उसमें इको नहीं आएगी।
1: कुकड़ू
3: को भाई, कुकड़ू को बहुत परेशान कर दिया आपने
1: भाई।
3: आप खत्म कर दो यार।
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: दिस शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek sham, ek stage aur do kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah.

0: ई कॉमर्स में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, फैशन की दुनिया से जुड़े हैं, या आपको फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में थोड़ा इंटरेस्ट है और बिजनेस करना चाहते हैं, है ना कतर आपके लिए? यस, कतर ने शुरू किया है ई कॉमर्स लाइसेंस और लगभग ऑलमोस्ट 194 बिजनेस एक्टिविटीज हैं जिनके लिए अब आप ई कॉमर्स लाइसेंस ले सकते हो।
1: #974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस, हम आपको बताना चाहेंगे ई कॉमर्स लाइसेंस फॉर मोर देन 190 बिजनेस एक्टिविटीज, और इन 194 एक्टिविटीज में बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट हैं जहां पर आप फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड, आप रिलेटेड उससे कोई प्रोडक्ट रखना चाहते हो, डिजिटल की दुनिया में आप डिजिटल डिजाइनिंग करना चाहते हो, AI कंसल्टेंट बनना चाहते हो, या कुछ ऐसा जो फोटोग्राफी से रिलेटेड है, ट्रांसलेशन सर्विस से रिलेटेड है, तो आप सबके पास अब एक बड़ा ही सिंपल सा ये लाइसेंस आ गया है। एंड यस, कतर नेशनल विजन 2030 को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने इसकी फीस रखी है कतरी रियाल जस्ट 500। बताइए, 500 रुपए का ये कमर्शियल, 500 रियाल का कमर्शियल लाइसेंस लेकर अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस चल निकले, आप जो बिजनेस करना चाहते हो उसमें कुछ अच्छा हो जाए, तो भाई आपके लिए तो लॉटरी लॉटरी है। सो सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म लाइसेंस इश्यूएंस फीस फॉर जस्ट कतरी रियाल 500। एंड आपको करना क्या है, इसके लिए आपको बिजनेस ऑपरेट करना है ई कॉमर्स लाइसेंस के जरिए, जहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक डोमेन लेना होगा जिसकी एंडिंग .qa से हो या फिर .com.qa से हो। तो चलिए, अगर आप अब तक बिजनेस प्लान कर रहे थे लेकिन सोचते थे यार कैसे करें, कैसे लाइसेंस मिलेगा, तो एकदम इजी वे फॉर्मेट आ गया है। आप समझ लीजिए दोस्त, आप अब अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप कोई और काम कर लीजिए, ये ना हो पाएगा तुमसे बेटा, मिर्ची इट्स हॉट।

0: तुम भी मारो एंट्री तो मेरे वॉलेट में बजती घंटी।
1: मस्त मौला गौरव।
0: यार मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान को ना कितना भी मिल जाए उसे कम ही लगता है, लेकिन जब कम ही मिल रहा हो तो कम लगेगा ही। हम अपनी बात कर रहे हैं, आपकी नहीं। वैसे तो 15 तारीख के बाद कम ही लगती है कि हमें वॉलेट की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि उसमें कुछ हो तब तो। लेकिन अगर आपके पास है तो गोल्ड अपडेट कर दे अलफरदान एक्सचेंज का।
2: गोल्ड अपडेट
0: वेल, अगर बात करें अलफरदान एक्सचेंज गोल्ड अपडेट, पैम्प 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 579 कतारी रियाल, पैम्प 5 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 2711 कतारी रियाल, पैम्प 10 ग्राम 5352 कतारी रियाल, पैम्प 1 आउंस गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 16543 कतारी रियाल एंड पैम्प 10 तोला गोल्ड बार 61432 कतारी रियाल। फायदा क्या होता है अगर आप पैम्प लेते हैं, याद रखिए ये सर्टिफाइड स्विस 24 कैरेट की गोल्ड वाली आपको एक गारंटी मिलती है, एंड साथ ही साथ आपको ये पता है कि जब भी हम चाहेंगे खटाखट से निकाल के इसको कैश में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो गोल्ड इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट विद अलफरदान एक्सचेंज, आपको ट्रस्ट और ज्यादा मिल जाता है। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
3: स्टे अहेड ऑफ टुडेज गोल्ड रेट्स विद अलफरदान एक्सचेंज, पैम्स ऑफिशियल एजेंट इन कतार। बाय ऑथेंटिक स्विस मेड 24 कैरेट पैम्प गोल्ड बार्स
4: एंड अर्न कतार एयरवेज एवियोस टुडे।
3: विजिट आवर ब्रांचेस और डाउनलोड द ऐप।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: रेडी?
6: रेडी।
5: टू लर्न?
6: यस।
5: टू प्ले?
6: एब्सोल्युटली।
5: टू ग्रो?
6: विद मेज़राती।
7: दिस स्कूल सीजन फ्यूल एवरी डे विद डिलिशियस एंड न्यूट्रिशियस मेज़राती फ्रेश प्रोडक्ट्स।
6: मिल्क, चीज, योगर्ट, लैवेंडर, एग्स।
7: फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू लंच बॉक्स एंड स्नैक्स, मेज़राती हैज योर फैमिली कवर्ड। ग्रो विद मेज़राती फ्रेशली फ्रॉम कतर।
8: तनिष्क लेकर आए हैं गार्डन ऑफ जेम्स, जहां कलर इज द स्टोरी बिहाइंड एवरी स्टोन, मेड टू बी वोन ऑफन। पहनिए चाहे क्लासिक डिनर ओकेजन के लिए, फैमिली फंक्शंस के लिए, या अ रेगुलर ऑफिस डे। अवेलेबल अक्रॉस तनिष्क स्टोर्स इन कतार और ऑनलाइन एट tanishq.ae। विजिट अ तनिष्क स्टोर नियर यू एंड सी द कलर्स इन पर्सन। TNC सप्लाई।
9: The show was absolutely amazing.
10: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर्स गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: हाँ जी, जावेद अली की आवाज में एक खूबसूरत गाना सुनाया किसने? ऐसे गाने में बस अक्षय खन्ना की तस्वीर आ जाती है। फिलहाल मस्त मौला गौरव इतना ही कहेगा, मौसम हमारी तस्वीर कब बदलेगा पता ही नहीं है। आज भी इतने ज्यादा कैसे आ गई?
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: मजाक लग रहा है दोस्तों, लेकिन सोचिए आप, सितंबर भी अब धीरे धीरे आधा खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर 43 से नीचे आने को तैयार ही नहीं है। आज दिन का मैक्सिमम जहां 43, वहीं लोएस्ट 29 पहुंचेगा, पर ह्यूमिडिटी का पारा अब धीरे धीरे शाम को बढ़ जा रहा है, जो कि हमें परेशान करता है। आज ये शायद थोड़ा कंट्रोल में रहे, 22% ह्यूमिडिटी राइट नाउ शो कर रही है। हवाओं की रफ्तार भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास, तो उतना ज्यादा कोई विंडी भी नहीं रहेगा, मतलब कुल मिला के एक गर्म शाम थोड़ी सी आप फील कर सकते हैं, लेकिन उतनी भी गर्म नहीं है कह सकते हैं। मस्मौला गौरव वेदर एक्सपर्ट टाइप सस्ता तो बनी गया है मिर्ची, इट्स हॉट। पायल देव एंड विशाल मिश्रा की आवाज में नसीब से ये गाना आ गया, मेरा फेवरेट है ऑल टाइम।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: शिल्पा राव, आपका तो हर गाना हमारा फेवरेट है, लेकिन इस बारिश में आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
2: आई लाइक दैट सॉन्ग।

0: आई फॉरगॉट द फिल्म्स नेम.
1: फिल्म का नाम था थक्षक और इस गायक का नाम शिल्पा राव. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
4: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए. मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स. अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो.
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग.
6: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
7: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मेरा हस्बैंड मेरी बात ही नहीं सुनता, क्या करूं?
1: अरे तो टेंशन काहे को ले रही है, उसको ना साइन लैंग्वेज में समझाना, नहीं तो लिख के दे दे।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: चलो जी, माशू का गाना खत्म हो गया, आपका आशिक आ गया। नाम है आपके साथ होता हूँ तो घड़ी का टाइम कैसे नहीं बताऊंगा। शाम के 5:03 से ज्यादा
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: क्या आप भी एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देख रहे हैं? तो मौका आ गया है दोस्तों।
2: #974 the most trending local news of the day।
0: यहाँ पर मस्तमौला गौरव आपको बताना चाहेगा कि हमारे कतर में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने की है। यस, उन्होंने लॉन्च किया है ई कॉमर्स लाइसेंस फ्रेमवर्क, और इसको लेकर बकायदा एक डिसीजन जो है वो बताया है, जहां पर अब आप अपने कमर्शियल एक्टिविटीज को डायरेक्टली अपनी ओन वेबसाइट से डिजिटलाइज और ऑपरेट कर सकते हैं। एंड इस इनिशिएटिव के जरिए अब 194 अप्रूव्ड कमर्शियल एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनको ये कवर करता है। ऐसे में अगर आप मान लीजिए फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड है, कंसल्टिंग से रिलेटेड है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है, फोटोग्राफी या फिर AI कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, आपके पास AI सॉल्यूशन है, तो अब आपके पास मौका है इस इकोसिस्टम का हिस्सा बनकर डिजिटल बिजनेस को बूस्ट देने का। यस, और इसको हम कतर के नेशनल विजन 2030 से अलाइन करते हुए मानते हैं, क्योंकि इसका मेन गोल है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को फास्ट फॉरवर्ड करना, मार्केट में और ट्रस्ट बढ़ाना, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए और ई कॉमर्स इन सब को एकदम परफेक्टली वेल बैलेंस करके रखेगा। बस लेकिन एक इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको याद रखना है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं जो इस अप्रूव्ड एक्टिविटी में है 194, याद रखिए आपको कोई भी डोमेन जो आप बुक करोगे उसके लिए मैंडेटरी है .qa या .com.qa। आपके ये 8 अप्रूव सर्विस प्रोवाइडर आप तक ये सारी चीजें पहुंचा देंगे एंड आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे, एंड आप हो जाएंगे एंटरप्रेन्योर। 89.6 मिर्ची 1 पर हबीबी मबरूक, अल्फ अल्फ मबरूक इन एडवांस, आप अब एंटरप्रेन्योर बन गए। मिर्ची इट्स हॉट।

0: हेलो,
1: किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं? किरण पाल जी से बोल रहा हूँ, आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग बिल जा रहा है, अब ये पे नहीं कर रहा है आपको।
0: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
1: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
0: 23।
1: एक सेकंड सर, अपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
0: बिल आया था 2200 रूपए का?
1: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
0: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
1: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
0: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
1: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
0: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती है।
1: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया, वरना फोन काट देंगे आपका सर, जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
0: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
1: हूँ? मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर, आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
0: चिल्लाने का क्या मतलब है?
1: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा यार मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपको, मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
2: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
0: हेलो
1: सर, से जिग्नेश बोल रहा हूँ, 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
0: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
1: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
0: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार।
1: नहीं तो आप से बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज। सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है, मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे और चिल्ला।
0: कुकड़ों को
1: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक। मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मिल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मिल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
4: The show was absolutely amazing.
5: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट STT Snow. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

ना गंदी नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आपके अंदर सेविंग मेंटालिटी है तो। गंदी बात तो मेरी है कि सैलरी आती है हर बार सोचता हूँ कुछ तो बचा के रखूंगा, 15 के बाद भी मेरे पास पैसे रहेंगे, पर मेरी आदत गंदी पड़ गई, खर्चे हो जाते हैं। पर अगर आपने बचा रखे हैं तो घर भेजो ना, आई पे एक्सचेंज रेट हम बता रहे हैं। Yes, तो एक कतरे रियाल के बदले इस वक्त मिलने वाले इंडियन रुपीज 26 रुपए 28 पैसे हैं, 26.28 INR। वही अगर हम बात करें श्रीलंकन रुपीज की, अगेंस्ट 1 कतरे रियाल 91.05 श्रीलंकन रुपीज। अब पाकिस्तान रुपीज की तरफ बढ़ते हैं जनाब, वाहिद कतरे रियाल के बदले 76.08 आपको मिल जाने पाकिस्तान रुपीज के लिए अगर आप एक कतरे रियाल देते। वही अगर तपाई को नेपाली रुपीज के रेट से एक कतरे रियाल के बदले 41.97 का भालचा रेट रहा। हाँ जी, 41.97 को रेट छ, घर भेजन लाई सही टाइम छ भाई। अगर इसके बाद बांधो बांग्लादेशी टाका बात करेगा दादा, एक्टर कचरे रियाल के बदले 33.70 तो 33.70 आइटर रेट आए बांग्लादेशी टाका छिलम। मास्ट मोलो गौरव के साथ ये था 89.6 मिर्ची 1 पर करेंसी एक्सचेंज रेट, मिर्ची इट्स हॉट।

आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन में ज्यादा यकीन करते हैं या अपने क्लास टॉपर्स की तरह पहले से प्रिपेयर? वेल, अब आपको ये खुद चुनना है कि आप किस रास्ते पे जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे टॉपर्स वाला रास्ता बहुत अच्छा लगता है, वो पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं। अब आपको पता है फेस्टिवल्स आने वाले हैं, खर्चे काफी ज्यादा होंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर आप अभी से अपनी गोल्ड खरीदने की प्लानिंग नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो भाई साहब? यस, हम आपको बता दें, आप अभी से अपने गोल्ड रेट को लॉक इन कर लो। तनिष्क लेकर आया आपके लिए एक अमेजिंग सॉल्यूशन, जहां पर आप अपनी फेवरेट फेस्टिव ज्वेलरी को अभी से बुक कर सकते हैं एंड आपको पे करना है सिर्फ और सिर्फ 20% इन एडवांस, और आपको मिलेगा बुकिंग डेट या बिलिंग डेट के बीच लोएस्ट गोल्ड रेट का फायदा। हाँ जी, इसे कहते हैं अपने स्मार्ट दिमाग का स्मार्ट यूज। तो मान लीजिए अब आपको लग रहा है कि फेस्टिवल आएंगे, गोल्ड रेट बढ़ने वाले हैं, हमारे पास और भी खर्चे होंगे, तो मैं कहता हूँ टेंशन खत्म होगी ना, अब आप सेविंग ही सेविंग करोगे। मान लो आपको कुछ पसंद आया, जाइए फटाफट से अभी से 20% एडवांस देके बुक कर लीजिए और फिर इंतजार कीजिए जिस दिन आपको ये लेना है उस डेट से लेकर बिलिंग डेट के बीच का लोएस्ट गोल्ड रेट आपको लग जाएगा। एंड दिस स्पेशल ऑफर इज टिल 8th of November। रिमेंबर, आप 8 नवंबर 2026 तक ही इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। तो बस आज ही नियरेस्ट तनिष्क पे जाइए एंड आज ही जाके बुक कर दीजिए और उसी दिन लेकर आइए जब आपको लगे कि अब मौका है फेस्टिवल को और खूबसूरत बनाने का और अपनी वाली को और खुश करने का। 89.6 मिर्ची वन मस्त मौला गौरव आपके साथ मिर्ची इट्स हॉट।

नाचेंगे गाएंगे धमाल करेंगे और फिर सुहानी के सामने हम सब के होश उड़ जाएंगे। अरे 25 सितंबर की शाम होगी ही ऐसी। हालांकि ये थर्सडे से उस थर्सडे तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं। हम बहुत सारा धमाल करने वाले हैं क्योंकि 25th ऑफ सितंबर QNCC में दी मेंटली सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम होंगी। दिस इज ब्रॉट यू बाय कतर कैलेंडर प्रेजेंटेड बाय आईपे एंड इतना ही कहूंगा एक ऐसी शाम जो इससे पहले कतर ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया उसका मौका आ गया। किस बात का इंतजार कर रहे हो? अपनी टिकट्स बुक कर लो। लास्ट वीकेंड है अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा क्योंकि अगले फ्राइडे तो ये सब कुछ होना है। तो इस वीकेंड सारे दोस्तों के साथ बैठ के प्लान सॉर्टेड। हाँ जी, और खास बात यह है कि सुहानी के पहले थोड़ी म्यूजिकल महफिल होगी, डांस का तड़का होगा जहां पर चरण सिंगर एंड आसी डांसर भी परफॉर्म करने वाले हैं एंड उसके बाद सुहानी का वो मेंटली शो जहां पर वो हमारे दिमाग को एकदम घुमा देंगे। इंतजार मत करो, टिकट्स बुक करो एंड एससीटी स्नूनू पर 30 कतरी रियाल का कैशबैक अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। इसी उम्मीद से कि इस वीकेंड आप अपनी टिकट्स बुक कर रहे हो। मस्त मौला गौरव लेगा अलविदा, लौटेगा शनिवार की शाम में हफ्ते का बेस्ट लेकर। तब तक के लिए हबीबी गुल्लक मिर्ची हरारा कतीर इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: करण जोहर, ऑनेस्टली बताइए, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द मॉनसून?
2: बारिश का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ कि आसमान के आंसू अभी गिरने लगे हैं। ऑलवेज लुक एट मॉनसून के, ये बस उनके आंसू हैं, तो वी हैव टू पहुंच जाए जल्दी तो क्या। बट आई नो के रेन और बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन महीने में हमेशा ये मेरे फेवरेट महीने नहीं है साल के।
1: ये थे करण जोहर, हु स्पोक लाइक अ ट्रू ब्लू मुंबईकर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: मेरी बीपी कभी मुझे सीरियसली लेती ही नहीं, क्या करूं?
1: तो प्रभु क्या है ना कि आप तुरंत ही हॉस्पिटल की ओर प्रस्थान करें, सीरियस लोगों को ना वहीं ले जाया जाता है।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बज गए शाम के छह एंड यू एंजॉयिंग क्लब मिर्ची
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर
3: लेडीज एंड जेंटलमैन फैस्टन योर सीट बेल्ट्स एंड वेट फॉर द नो स्मोकिंग साइन वी आर गोना गो वी आर गोना गो वी आर गोना गो
4: ऑन अ राइड
5: क्लब मिर्ची विद ऑयंतिका एंड डीजे रिचर्ड ओनली

हेलो पीपल, वेलकम टू क्लब मिर्ची। वीकेंड आ गया और वीकेंड का मतलब प्लान्स। अब किसी के प्लान्स में गोवा है, किसी के प्लान्स में नाइट क्लब, और कुछ लोग हैं जो सिर्फ वीकेंड पे क्लब मिर्ची सुनते हैं विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। क्योंकि वीकेंड के लिए भाई क्राउड जरूरी नहीं, थोड़ा म्यूजिक, थोड़ी मूड और जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अ फ्यू आवर्स बस। So let's start this episode with our favorite Ek Din Teri Raho Mein. Let's go!

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: Hello.
3: हेलो
2: हाँ जी कौन
3: हाँ जी कौन
2: हेलो किससे बात करनी है
3: किससे बात करनी है
2: भैया किससे बात
3: अबे किससे बात करनी है
2: भैया नंबर चेक करके
3: नंबर चेक करके दोबारा मिला
2: पागल
3: पागल
2: कौन बोल रहा
3: अरे पता नहीं कौन बोल रहा था
4: इको आ रहा है इको
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो
3: हेलो जेल साले भैया को मारूंगा तुझे मैं बता रहा हूँ
2: भैया नंबर चेक
3: नंबर चेक के मिला
2: हेलो
3: हेलो क्यों परेशान कर रहा है किसी को पागल हो गया क्या यार पता नहीं कौन है फोन करे जा रहा है फोन करे जा रहा है
2: भैया
3: अबे पागल हो गया क्या यार महंगा पड़ जाएगा नंबर आ गया मेरे पास पागल कहीं का
4: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया क्या नाम है सर आपका बुरा मत मानिएगा प्लीज रवि रवि मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ अब एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे उसमें इको नहीं आएगी
2: कुकड़ू को
4: भाई को बहुत परेशान कर दिया आपने
2: भाई
4: अब आप खत्म कर दो यार
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं
6: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग
7: हेलो कतार आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में सी यू एट द शो
8: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल बुक योर टिकट्स नाउ एट STT Snoo Noo टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव

वीकेंड में दो चीजें आसमानी होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशंस और हील्स। बाकी बिल जमी पर ही रहे, वरना मंडे का मूड खराब हो जाएगा। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन यून टिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: The show was absolutely amazing.
2: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
0: The mentalist Sohani Shah.

0: गोल्ड रेट कब बढ़ेगा कब गिरेगा, फेस्टिवल शॉपिंग के टाइम ये टेंशन क्यों?
1: With Tanishq's best gold rate offer, अपनी फेवरेट ज्वेलरी चूज करें और सिर्फ 20% एडवांस पे करके बुक कर दें। जब फाइनल परचेज कंप्लीट करेंगे तब बुकिंग डेट या बिलिंग डेट में से जो गोल्ड रेट लोअर होगा वही मिलेगा। मतलब फेस्टिव शॉपिंग प्लान कीजिए विदाउट पेइंग द फुल अमाउंट टुडे। ऑफर वैलिड अंटिल 8th नवंबर 2026 एट Tanishq लुलु हाइपरमार्केट, डी रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी। ओपनिंग सून एट अल वतन सेंटर एंड बरवा विलेज। Tanishq, ज्वेलरी बाइंग मेड इजियर। TNC'S अप्लाई।
2: 89.6, 89.6.
3: It's hot.
4: Ladies and gentlemen, we are gonna go
5: on a ride.

वीकेंड क्रश का भी अलग ही नशा है। फ्राइडे को लगता है दिस कुड बी समथिंग, संडे तक रियलिटी चेक मिल ही जाता है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयंतिका। वेलकम बैक।

बारिश हो या वीकेंड, मूड तो है ही लेजी। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंते का पार्टी कैंसिल करने का बेस्ट एक्सक्यूज मिल गया। एंजॉय करे एक साथ लेजी लम्हे।

प्रेशर है, कपल्स को डेट प्लान करना है, सिंगल्स को प्रिटेंड करना है दैट दे लव बीइंग सिंगल, और सबको इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालनी है। यही तो है सोशल मीडिया, इश्क जैसा कुछ।

चक दे इंडिया इंडिपेंडेंस का अभी भी फीवर जारी है ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑय ऑन दिखा। अब इंडिपेंडेंस से स्ट्रेट टू पैसा, बिकॉज आफ्टर ऑल उसके ऊपर ही तो सब डिपेंडेंट है ना। क्लब मिर्ची रे।

लव मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंदिका के साथ. दिस प्लेलिस्ट इज मूविंग फास्टर देन योर वीकेंड क्रश. वी हैव केसरिया फॉर यू राइट नाउ. लेट्स गो.

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बज गए 7 एंड यू एंजॉयिंग क्लब मिर्ची
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर

वेलकम बैक पार्टी पीपल, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। वीकेंड पे किसी को अपना बनाना है, सिंपल फूड ऑर्डर कर दो यार, म्यूजिक लगाओ और उनका फेवरेट डिजर्ट सीक्रेटली सेव कर लो। रोमांस सॉल्व्ड।

वीकेंड हग्स आर फ्री थेरेपी क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। और अगर इसी हग के बाद कोई बोले चलो पार्टी का बिल स्प्लिट करते हैं तो रोमांस वहीं पे खत्म। सिफारिश तो जरूरी है लेकिन फॉर नाउ सिर्फ खुद के लिए ही सिफारिश करो यार।

डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका वीकेंड पार्टी के बीच में एक मोमेंट आता है जब डीजे वॉल्यूम बढ़ाता है और वॉलेट क्वाइटली प्रेयर करता है, मौला मेरे मौला यूपीआई बैलेंस बचाना। क्लब में

बड़ी में बेख्याली जरूरी है। क्लब मिर्ची मिर्ची रिचर्ड मिर्ची और योंटिका, बस वॉलेट के साथ मत करना यार। कल सुबह बैंक स्टेटमेंट देख के बेला चाओ खुद बोलना पड़ेगा।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: The show was absolutely amazing.
2: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
3: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah.

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका एक साथ। वीकेंड पे सिर्फ एक ही दुआ है, मंडे दूर रहे, बैटरी फुल रहे और पार्टी में वो दोस्त ना आए जो हर गाने पे डीजे बन जाता है। या अली, तोड़ दुश्मन की गली।

हाँ हाँ सब चिल्ड्रन ही तो बन जाते हैं वीकेंड पे क्लब मिर्ची वजीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। डिफरेंस इतना है कि बच्चों को घर वाले सुलाते हैं, हम खुद संडे को बेड से नहीं उठते। खैरियत रहती है क्या? चलो लेट्स जैम टुगेदर।

0: अगर वीकेंड में दिल किसी के और जा रहा है तो जाने दो यार, बस पहले कंफर्म कर लो कि वो भी तुम्हारी ओर आना चाहती है कि नहीं।
1: क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंटिका बेबी।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
4: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
3: क्या?
4: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
5: मिर्ची, इट्स हॉट। Attention shoppers, the news you've been waiting for is finally here.
6: Yes, it's time for Lulu Mega Deals.
5: Everyday essentials se lekar latest electronics, stylish fashion, fresh food and home favorites.
6: Sab kuch under one roof with incredible value. Spend less, save way more.
5: Exactly. To kal ka wait bilkul mat karo. Shop today, save today.
6: Rush to your nearest Lulu hypermarket right now before these deals are gone.
5: Lulu Mega Deals.
6: More shopping, more savings.
5: More mega moments. Visit Lulu today. Lulu, where the world comes to shop.
7: 89.6, 89.6.
5: It's hot.
8: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are gonna go. We are

अपनी बैंक बैलेंस को गुप्त ही रखिए क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल टेकआउट। प्यार तो मुश्किल है ही और वीकेंड पे होटल रूम सर्विस भी। मेन्यू देखो, प्राइसेस देखो, फिर मैगी ऑर्डर करके सेल्फ रिस्पेक्ट सेव कर लो यार।

0: Energy will be right back after these messages.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अभिजीत सावंत, जब भी आपके बारे में सोचते मोहब्बतें लुटाऊंगा यही याद आता है। बारिशों के लिए एक अलग

0: अच्छा वो झड़ी है क्या? मैं हमेशा लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है गाती थी अभिजीत सावंत. थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
2: दिस शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग.
3: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
4: The Mentalist Suhani Shah live.

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में रात के आठ की पारिंग विद क्लब मिर्ची
2: टाइम चेक
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर
4: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो वी आर गोना गो वी आर गोना

हर क्लब में चीफ डीजे रिचर्ड मिर्ची और यौन का वीकेंड पार्टी का एक स्टेज होता है जब कोई म्यूजिक समझता ही नहीं, स्टेप्स समझता ही नहीं, फिर भी सेंटर में जाके जमाल कुदू कर रहा होता है, तो गाना ही एंजॉय कर लेते हैं।

0: कुछ ना कुछ जरूर जाता है, एनर्जी, वॉइस, कभी कभी डिग्निटी. ले गई क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर टिका.
1: डोंट इवन बदर एक्सप्लेन, ही सेज, cuz आई डोंट वांट टू हियर इट. जस्ट गेट यस.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: हेलो
2: हेलो, किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं? किरण पाल जी से बोल रहा हूँ, आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग बिल जा रहा है, अब ये पे नहीं कर रहा आपको।
1: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
2: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
1: 23।
2: एक सेकंड सर, अपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
1: बिल आया था 2200 रूपए का?
2: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
1: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
2: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
1: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
2: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
1: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती।
2: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया है, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
1: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
2: हूँ मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर। आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
1: चिल्लाने का क्या मतलब है?
2: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपको, मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
3: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
1: हेलो
2: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
1: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
2: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
1: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहे हैं।
2: नहीं तो आप बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज। सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है सर। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है, मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे। और लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। Attention shoppers, the news you've been waiting for is finally here.
5: Yes, it's time for Lulu Mega Deals.
4: Everyday essentials se lekar latest electronics, stylish fashion, fresh food and home favorites.
5: Sab kuch under one roof with incredible value. Spend less, save way more.
4: Exactly. So kal ka wait bilkul mat karo. Shop today, save today.
5: Rush to your nearest Lulu hypermarket right now before these deals are gone.
4: Lulu Mega Deals.
5: More shopping, more savings.
4: More mega moments. Visit Lulu today. Lulu, where the world comes to shop.
6: The show was absolutely amazing.
7: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
8: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नूनू। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
9: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो।

वेलकम बैक, क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। वीकेंड पार्टी के बाद संडे को एक ही सवाल पूछना है, वो भी मिरर को, हु इज द मैन इन द मिरर, क्योंकि हुलिया ही बदल जाता है हमारा, है कि नहीं।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
4: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
3: क्या?
4: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: The show was absolutely amazing.
7: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by IPE. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.
8: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go.

क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंदिका आपके साथ। अब वीकेंड में ओ माही वाइब्स तो ऑफ कोर्स मिलेगी। रोमांस हो या ब्रोमांस, बस कोई तो हो जो बोले चल पार्टी करते हैं।

सीरियसली टेस्ट जब फेवरेट सॉन्ग आए और आपका फ्रेंड बोले मैं डांस नहीं करता, 5 seconds later मकड़ा मोड ऑन एंड द फ्लोर इज गोइंग क्रेजी।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: The late Irfan Khan से एक बार पूछा गया कि कहाँ की बारिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है? Is it Delhi? Is it Mumbai?
4: उसका मजा सिर्फ राजस्थान में है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ बरसात जो है देर से होती है। वहाँ जो है सावन को सेलिब्रेट किया जाता है, सावन भादो जो कहते हैं, यू नो, फसल भी कटती है और झूले लगते हैं। राजस्थान में जो है बरसात में भीगने का और बरसात का जो मजा है वो बहुत अलग है।
3: ऐसा एक दिन नहीं जाता जब इरफान खान का ख्याल नहीं आता। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

मिर्ची में डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन दिखा। वेलकम बैक पीपल। वीकेंड आते ही शेर खुल गए। फ्राइडे तक जो ऑफिस में गुड मॉर्निंग सर बोल रहे थे, आज डांस फ्लोर पे बोलेंगे हेलो मूव।

डांस बसंती, वीकेंड पे डांसिंग का कोई रूल नहीं, स्टेप्स गलत हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं। एम्बैरेसमेंट इज ऑल्सो अ ग्रुप एक्टिविटी टुडे ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका।

0: Club Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Hello, Mirchi helpline?
2: Hi there, what's up? Tell me.
1: सर ऑफिस में किसी को मेरी वैल्यू पता नहीं है, क्या करूं?
2: ब्रो यार, इट्स सो सिंपल, कल ऑफिस में सबको अपनी सैलरी बता दे, एवरीवन विल नो योर वैल्यू।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

वेलकम बैक पार्टी पीपल, क्लब मिर्ची जा रही है, डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिक आपके साथ। वीकेंड सनी हो या रेनी, पार्टी मूड सनी तो होना ही है, तो लेट्स या सनी सनी टुगेदर।

म्यूजिक लाउड, मूड लाउडर। नेबर्स कंप्लेन करे तो वॉल्यूम कम कर देना, पार्टी नहीं। प्रायोरिटीज पीपल, क्लब मिर्ची डेज विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योम टिका।

वीकेंड पे ये मेरा दिल किसी को भी दे सकती हूँ मैं, बट क्रेडिट कार्ड नेवर, दैट्स इमोशनली अनअवेलेबल. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन टिका.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Attention shoppers, the news you've been waiting for is finally here.
2: Yes, it's time for Lulu Mega Deals.
1: Everyday essentials se lekar latest electronics, stylish fashion, fresh food and home favorites.
2: Sab kuch under one roof with incredible value. Spend less, save way more.
1: Exactly. So kal ka wait bilkul mat karo. Shop today, save today.
2: Rush to your nearest Lulu hypermarket right now before these deals are gone.
1: Lulu Mega Deals.
2: More shopping, more savings.
1: More mega moments. Visit Lulu today. Lulu, where the world comes to shop.
3: The show was absolutely amazing.
4: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
5: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल. बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नूनो. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स.
6: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड.
0: क्लब मिर्ची.

0: 춤도
1: Club Mirchi only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
2: Mirchi stories.
3: बस 24 घंटे ही रहेंगी
4: यार। तुझे पता है एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
5: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
4: क्या?
5: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: Ladies and gentlemen, we are gonna go
8: on a ride.

वेलकम बैक पार्टी पीपल। सैया जी हो या बेस्टी, वीकेंड पे एक सवाल फिक्स्ड है, कितने बजे निकलोगे यार? एंड द आंसर इज बस 5 मिनट्स, दैट नेवर कम्स। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंटिका।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
2: शिल्पा राव, आपका तो हर गाना हमारा फेवरेट है, लेकिन इस बारिश में आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
3: I like that song.

0: आई फॉरगॉट द फिल्म्स नेम.
1: फिल्म का नाम था थक्षक और इस गायक का नाम शिल्पा राव. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो.

मिर्ची में चीज है रिचर्ड मिर्ची और योंतिका बखिया गुलाब हो या रेड, वीकेंड के एंड तक सबका लुक सेम ही होता है। डिफरेंस बस फिल्टर्स का है ऑन सोशल मीडिया।

कई बार है एंड वीकेंड पार्टी में क्रश भी कई बार हो ही जाता है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका, बस यही तो करते हैं हम तेरे प्यार में।

इंडिया इंडिपेंडेंस का अभी भी फीवर जारी है ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन दिखा। अब इंडिपेंडेंस से स्ट्रेट टू पैसा, बिकॉज आफ्टर ऑल उसके ऊपर ही तो सब डिपेंडेंट है ना। क्लब मिर्ची इट इज।

क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका के साथ. दिस प्लेलिस्ट इज मूविंग फास्टर देन योर वीकेंड क्रश. वी हैव केसरिया फॉर यू राइट नाउ.

हेलो पीपल, वेलकम टू क्लब मिर्ची। वीकेंड आ गया और वीकेंड का मतलब प्लान्स। अब किसी के प्लान्स में गोवा है, किसी के प्लान्स में नाइट क्लब, और कुछ लोग हैं जो सिर्फ वीकेंड पे क्लब मिर्ची सुनते हैं विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। क्योंकि वीकेंड के लिए भाई क्राउड जरूरी नहीं, थोड़ा म्यूजिक, थोड़ी मूड और जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अ फ्यू आवर्स बस। So let's start this episode with our favorite Ek Din Teri Raho Mein. Let's go!

0: Richie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: हेलो,
2: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ? गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ आपको. अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट? और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं. आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
1: बोल कौन रहा है?
2: मैं जयदेव बोल रहा हूँ, और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं. अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज.
1: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है. जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
2: बिल्कुल
1: अलाउ नहीं करते हैं. जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे.
2: सही बात है,
1: गर्ल्स को नहीं देंगे.
2: सही बात कह रही हैं. और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई.
1: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है.
2: एक सेकंड होल्ड करिएगा. तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती? पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार. शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ. मैं
1: हाँ, आप किससे बात कर रहे हैं?
2: मैं, वो मेरी वाइफ है यही.
1: हेलो,
2: हाँ बोलिए.
1: हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधरिए.
2: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ.
1: नहीं, आप मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं. हाँ? नकली तरह से आप मेरे से बातें कर रहे हैं.
2: नहीं, नकली तरीके से क्या?
1: नहीं, असली मुझे दिख रही है. असली नहीं कर रहे हैं.
2: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार.
1: नहीं, बात
2: नहीं, तमीज सीख ले.
1: नहीं, तमीज नहीं, सुनिए, बिल्कुल नहीं सुनिए.
2: मेरी बात सुनिए. देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया.
1: Oh my.
2: और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
4: Ladies and gentlemen, we are gonna go!

वीकेंड में दो चीजें आसमानी होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशंस और हील्स। बाकी बिल जमी पर ही रहे, वरना मंडे का मूड खराब हो जाएगा। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन यून दिखा।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
4: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
3: क्या?
4: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Ladies and gentlemen, we are gonna go on a ride.

वीकेंड क्रश का भी अलग ही नशा है। फ्राइडे को लगता है दिस कुड बी समथिंग, संडे तक रियलिटी चेक मिल ही जाता है। क्लब मिर्ची विद जीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। वेलकम बैक।

खुश हो या वीकेंड, मूड तो है ही लेजी। क्लब मिर्ची में टीजर रिचर्ड मिर्ची और यौन देगा, पार्टी कैंसिल करने का बेस्ट एक्सक्यूज मिल गया। एंजॉय करे एक साथ लेजी लम्हे।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: करण जोहर, ऑनेस्टली बताइए, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द मॉनसून?
4: बारिश का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ कि आसमान के आंसू अभी गिरने लगे हैं। ऑलवेज लुक एट मॉनसून के ये बस उनके आंसू हैं, तो वी हैव टू पहुंच जाए जल्दी। तो क्या, बट आई नो के रेन और बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन महीने में हमेशा ये मेरे फेवरेट महीने नहीं है साल के।
3: ये थे करण जोहर, हु स्पोक लाइक अ ट्रू ब्लू मुंबईकर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you.
1: Bollywood Boldal.
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi. It's hot.
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा।

रिचर्डन मिर्ची और योंतिका आपके साथ। वीकेंड रोमांस का भी अपना ही प्रेशर है। कपल्स को डेट प्लान करना है, सिंगल्स को प्रिटेंड करना है दैट द लव बीइंग सिंगल, और सबको इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालनी है। यही तो है सोशल मीडिया, इश्क जैसा कुछ।

मुकाबला डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योन दिखा का विद क्लब मिर्ची एंड बेबी नो नो वी हेट लव स्टोरीज बट यू लव आई हेट लव स्टोरीज दैट्स व्हाट वी गोना प्ले ऑन क्लब मिर्ची लेट्स गो

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: मेरा हस्बैंड मेरी बात ही नहीं सुनता, क्या करूं?
2: अरे तो टेंशन काहे को ले रही है, उसको ना साइन लैंग्वेज में समझाना, नहीं तो लिख के दे दे।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंतिका। वीकेंड पार्टी के बीच में एक मोमेंट आता है जब डीजे वॉल्यूम बढ़ाता है और वॉलेट क्वाइटली प्रेयर करता है, मौला मेरे मौला यूपीआई बैलेंस बचाना। क्लब मिर्च

ख्याली जरूरी है क्लब मिर्ची मिर्ची रिचर्ड मिर्ची और योंतिका, बस वॉलेट के साथ मत करना यार, कल सुबह बैंक स्टेटमेंट देख के बेला चाओ खुद बोलना पड़ेगा।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: The show was absolutely amazing.
2: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
3: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms.
4: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go. On a ride.
0: Club Mirchi.

वेलकम बैक पार्टी पीपल, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। वीकेंड पे किसी को अपना बनाना है, सिंपल फूड ऑर्डर कर दो यार, म्यूजिक लगाओ और उनका फेवरेट डिजर्ट सीक्रेटली सेव कर लो। रोमांस सॉल्व्ड।

वीकेंड हग्स और फ्री थेरेपी क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। और अगर इसी हग के बाद कोई बोले चलो पार्टी का बिल स्प्लिट करते हैं तो रोमांस वहीं पे खत्म। सिफारिश तो जरूरी है लेकिन फॉर नाउ सिर्फ खुद के लिए ही सिफारिश करो यार।

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योम का एक साथ। तो वीकेंड पे सिर्फ एक ही दुआ है, मंडे दूर रहे, बैटरी फुल रहे और पार्टी में वो दोस्त ना आए जो हर गाने पे डीजे बन जाता है। या अली, तोड़ दुश्मन की गली।

वहाँ सब चिल्ड्रन ही तो बन जाते हैं वीकेंड पे क्लब मिर्ची मजीचर रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि बच्चों को घर वाले सुलाते हैं, हम खुद संडे को बेड से नहीं उठते। खैरियत रहती है क्या? चलो लेट्स जैम टुगेदर।

0: अगर वीकेंड में दिल किसी के और जा रहा है तो जाने दो यार, बस पहले कंफर्म कर लो कि वो भी तुम्हारी ओर आना चाहती है कि नहीं।
1: लव मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंटिका बेबी।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Bordal. Only on Mirchi. It's hot.
2: अभिजीत सावंत, जब भी आपके बारे में सोचते मोहब्बतें लुटाऊंगा यही याद आता है। बारिशों के लिए एक अलग

0: है।
1: अच्छा वो झड़ी है क्या? मैं हमेशा लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है गाती थी अभिजीत सावंत। थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर

अपनी बैंक बैलेंस को गुप्त ही रखिए क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल टिकाऊ। प्यार तो मुश्किल है ही और वीकेंड पे होटल रूम सर्विस भी। मेन्यू देखो, प्राइसेस देखो, फिर मैगी ऑर्डर करके सेल्फ रिस्पेक्ट सेव कर लो यार।

0: Energy will be right back after these messages.
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
2: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन बता बेटा सवाल क्या है
1: क्या बताऊं अब मेरे बंदे ने आज फिर से मुंह लटका रखा है
2: अरे क्या कर रहे हो मैडम जल्दी से उसका मुंह हुक से उतारो मुंह को लटकाते नहीं फ्रिज में रखते हैं बाहर रहेगा तो डिकम्पोज हो जाएगा और पुलिस भी आसानी से ढूंढ लेगी
3: I'm joking. Mamma mia, come on.
4: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go
5: on a ride.
0: Club Mirchi with Oyon Deka and DJ Richard.

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

मिर्ची वजी चल रिचर्डन मिर्ची ओयोंते का वीकेंड पार्टी का एक स्टेज होता है जब कोई म्यूजिक समझता ही नहीं, स्टेप्स समझता ही नहीं, फिर भी सेंटर में जाके जमाल कुदू कर रहा होता है, तो गाना ही एंजॉय कर लेते हैं।

0: कुछ ना कुछ जरूर जाता है, एनर्जी, वॉइस, कभी कभी डिग्निटी. ले गई ले गई. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर टिका.
1: डोंट इवन बदर एक्सप्लेन, ही सेज, cuz आई डोंट वांट टू हियर इट. जस्ट गेट यस.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: हेलो
2: हेलो, किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोल रहा हूँ
2: किरण पाल जी से बोल रहा हूँ, आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग पे बिल जा रहा है, आप ये पे नहीं कर रहे हैं? आपको
1: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
2: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
1: 23
2: एक सेकंड सर, आपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
1: बिल आया था 2200 रूपए का?
2: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए है ना?
1: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
2: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
1: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
2: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
1: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात चिल्ला के भी की जाती है।
2: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन आप पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया है, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
1: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
2: हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर, आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
1: चिल्लाने का क्या मतलब है?
2: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपको, मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
3: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
1: हेलो
2: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
1: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
2: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
1: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार।
2: नहीं तो आप ये बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज। सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है। मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे और चिल्ला।
1: कुकड़ों को
2: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoo. Tickets available in all leading ticketing platforms.
8: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go.

वेलकम बैक क्लब मिर्ची जारी है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। वीकेंड पार्टी के बाद संडे को एक ही सवाल पूछना है, वो भी मिरर को, हु इज द मैन इन द मिरर, क्योंकि हुलिया ही बदल जाता है हमारा, है कि नहीं।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
4: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
3: क्या?
4: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: The show was absolutely amazing.
7: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
8: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

वेलकम बैक, क्लब मिर्ची जा रही है। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंदिका आपके साथ। अब वीकेंड में ओ माही वाइब्स तो ऑफ कोर्स मिलेगी। रोमांस हो या ब्रोमांस, बस कोई तो हो जो बोले चल पार्टी करते हैं।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अनु मलिक, आपको देख के लगता है कि जब आप पैदा हुए ना आपने पहले मम्मी कहा ना पापा, आपने कहा होगा देखो बारिश हो रही है. But really, tell us, how old were you when you made the song?
4: What, I was 25 or something. It was raining cats and dogs. Waterfall से पानी गिर रहा था. सारे बादल नीचे आ चुके. And उस बीच में then I saw the little train coming out. देखो बारिश हो रही है. देखो ना देखो, it's raining, it's raining, it's raining.
3: अब Twinkle Twinkle Little Star और बाबा ब्लैक शीप के साथ में ये वाला गाना तो ऐड कर ही लेना चाहिए स्कूल्स में, है ना अनु मलिक? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स आउट.
1: बॉलीवुड बोल्डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड.

मिस बसंती, वीकेंड पे डांसिंग का कोई रूल नहीं, स्टेप्स गलत हो सकते, कॉन्फिडेंस नहीं, एम्बैरेसमेंट इज ऑल्सो अ ग्रुप एक्टिविटी टुडे ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयंतिका।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

वेलकम बैक पार्टी पीपल, क्लब मिर्ची जा रही है, डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिक आपके साथ। वीकेंड सनी हो या रेनी, पार्टी मूड सनी तो होना ही है, तो लेट्स हियर सनी सनी टुगेदर।

म्यूजिक लाउड, मूड लाउडर। नेबर्स कंप्लेन करे तो वॉल्यूम कम कर देना, पार्टी नहीं। प्रायोरिटीज पीपल, क्लब मिर्ची डेज विद डीजे रिचर्ड, मिर्ची और योम्तिका।

वीकेंड पे ये मेरा दिल किसी को भी दे सकती हूँ मैं, बट क्रेडिट कार्ड नेवर, दैट्स इमोशनली अनअवेलेबल. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची आयोनिका.

0: 키운가?
1: 클럽 매치 only on 매치. We'll be right back after these messages. It's hot.
2: 매치 스토리즈.
3: 24 घंटे ही रहेंगी
4: यार। तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
5: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
4: क्या?
5: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: The show was absolutely amazing.
8: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by IPay. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.
9: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go on a ride.

वेलकम बैक पार्टी पीपल। सैया जी हो या बेस्टी, वीकेंड पे एक सवाल फिक्स्ड है, कितने बजे निकलोगे यार? एंड द आंसर इज बस 5 मिनट्स, दैट नेवर कम्स। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंटिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: The late Irfan Khan से एक बार पूछा गया कि कहाँ की बारिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है? Is it Delhi? Is it Mumbai?
4: उसका मजा सिर्फ राजस्थान में है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ बरसात जो है देर से होती है। वहाँ जो है सावन को सेलिब्रेट किया जाता है, सावन भादो जो कहते हैं, यू नो, फसल भी कटती है और झूले लगते हैं। राजस्थान में जो है बरसात में भीगने का और बरसात का जो मजा है वो बहुत अलग है।
3: ऐसा एक दिन नहीं जाता जब इरफान खान का ख्याल नहीं आता। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो।

डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची आयोन का सॉर्टिंग योर वीकेंड। फ्रेंड्स के साथ पार्टी करो, फैमिली के साथ चिल करो, या फिर खुद के साथ डेट पे जाओ, बिकॉज हैप्पीनेस को कंपनी की जरूरत नहीं, सिर्फ थोड़ा म्यूजिक और जीरो जजमेंट चाहिए। दैट इज क्लब मिर्ची। हैव अ ब्यूटीफुल वीकेंड एंड हियर्स द साइन ऑफ ट्रैक। इट्स कॉल्ड स्वीट डिस्पोजिशन। टाटा।

0: मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी? फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: मेरी बीपी कभी मुझे सीरियसली लेती ही नहीं, क्या करूं?
1: तो प्रभु क्या है ना कि आप तुरंत ही हॉस्पिटल की ओर प्रस्थान करें, सीरियस लोगों को ना वहीं ले जाया जाता है।

89.6 Mirchi 1. It's hot. Yeah.